0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला भारत के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी साथ लाए हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथानॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को

0: बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रूगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी।
2: दोनों देशों के अधिकारी अब समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से प्रगति के इच्छुक हैं। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। दोनों नेता नई दिल्ली में बैठक के दौरान ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए थे। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया था कि व्यापक व्यापार समझौते की रूपरेखा से दोनों देशों को स्थायी लाभ होगा और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 4,65,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की साझा आकांक्षा को समर्थन मिलेगा। भारत और कनाडा के बीच 2024-25 में 8.66 अरब डॉलर का वस्तु व्यापार हुआ। भारत ने इस दौरान कनाडा को 4.22 अरब डॉलर का निर्यात किया। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इटली के अखबार कोरियरे दिल्ला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
3: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इजरायल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजरायल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं।
4: इंडिया And Russia have historically very good relations.
5: भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं, खासकर 1950 के दशक से। वह इतिहास भुलाया नहीं जा सकता। भारत के लिए सोवियत संघ एक ऐसा देश है जो कई तरह से हमारे साथ खड़ा रहा है, खासकर तब जब हमारी सुरक्षा और हमारी क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। ऐसे समय में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोसी देश में सैन्य शासन का समर्थन कर रहा था, रूस एक ऐसा देश था जिसकी विरासत ने कई मायनों में हमें आकार दिया है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए भारत का रुख स्पष्ट किया कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
6: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली

0: पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं, 100 बार करो। राहत इंदौरी साहब की कही ये बात थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है जनाब। मसलन, इश्क अगर खता है तो एक बार नहीं 100 बार करो, लेकिन किसी एक से ही करो तभी ये इश्क है। और इसी ज्ञान भरी बात के साथ स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मैं यानी नाज हूँ आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है दिल का मेल बॉक्स, जहाँ आप भेजेंगे ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस और बताएंगे कि आज कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, साथ ही कोई अच्छी सी शेर व शायरी या कोई भी अच्छी बात जो आप हमसे कहना चाहते हैं लिख डालिए बिना देर किए। fmgoldair@gmail.com पर करेंगे ईमेल और 9868686753 पर करेंगे व्हाट्सएप मैसेज। और देखिए आज है सोमवार, तो एक बड़े ही अच्छे गीत की आई है फरमाइश जिसे मैं आप पूरा करने जा रही हूँ। फिल्म है अपनापन, किशोरदा और सुलक्षणा पंडित जी की आवाजें हम सुनेंगे। और इस बेहद खूबसूरत गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना ने खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, साथ ही सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप ये गाना सुनना चाहते हैं।

और हम मिल गए हैं एक बार फिर, और साथ ही आपके ईमेल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस भी हमें मिल चुके हैं जिसे मैं अब प्रोग्राम में शामिल करने जा रही हूँ। दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। उफ, बड़ी गहरी बात लिखकर भेजी है नवीन भाटिया जी ने मोती नगर नई दिल्ली से, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस ईमेल के लिए। साथ ही अगला मैसेज जो मैं अब पढ़ने वाली हूँ वो हमें भेजा है बबलेश पवार जी ने, डैनी मनीष इनके साथ शामिल हैं, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा भी शामिल हैं, रामदेवरा से दिनेश चौहान शामिल हैं, और इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी है कि हर असफलता और दुख का समय यानी परेशानियों का समय हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है और सफलता की मंजिल के और करीब ले जाता है। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, ये याद रखना है। और भाई देखिए, हम भी जुड़े हुए हैं तो हमें भूल मत जाइएगा, हमारा मैसेज भी शामिल कर लीजिएगा। ये लिखकर भेजा है तुलसी मस्कीन जी ने, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा शामिल हैं, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी इनके साथ शामिल हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं हमें पूर्व सैनिक विजय सिंह जी भी, श्रीमती जसवीर कौर और वीर गग्गर जी भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त चंडी मंदिर हरियाणा से, और प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं ये मुझे मालूम है। चलिए अगला मैसेज शामिल कर लेते हैं अब। धर्मेंद्र छीपा जी का मैसेज मैं शामिल कर रही हूँ, कपिल छीपा, ईशान छीपा और

चा परिहार इनके साथ शामिल है और बड़े ही खूबसूरत गीत की इन्होंने फरमाइश लिखकर हमें भेजी है, तो चलिए ये गाना भी सुन ही लिया जाए और हम सब इस गाने को एंजॉय करेंगे क्योंकि लता जी की मीठी आवाज है, फिल्म है फकीरा।

कुछ नहीं बदला, दीवाने थे दीवाने ही रहे, हम नए शहरों में रहकर भी पुराने ही रहे। दिल की बस्ती में हजारों इंकलाब आए, मगर दर्द के मौसम सुहाने थे सुहाने ही रहे। हमने अपनी सी बहुत की पर वो नहीं पिघला, कभी उसके होठों पर बहाने थे बहाने ही रहे। ऐ परिंदों, हिजरतें करने से क्या हासिल हुआ, चोंच में थे चार दाने ही रहे। और ये अच्छी सी बात हमें लिखकर भेजी है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा जी ने, बिमला अनेजा जाखोद राजस्थान से पूजा खटक, बिमला देवी और शंभु दयाल खटक ने। और इसी के साथ एक अच्छी सी शुभकामना भी मुझे नजर आ रही है कि हंसी आपकी कभी कम न हो, खुशियां कभी आपसे दूर न हो, हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए और हर दिन यादगार बन जाए। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का ये मैसेज। और देखिए, काफी दिनों से हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, हम नहीं जानते क्यों, लेकिन दिल के मेलबॉक्स में हाजिरी तो बनती ही है। कितनी इज्जत मिलती है वो तो आरजे नाज ही जाने। ये थोड़ी मोड़ी नाराजगी के साथ व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा ने। उम्मीद है आपकी नाराजगी तो अब दूर हो गई होगी। और इसी के साथ चलिए कुछ और मैसेजेस भी कर लेते हैं शामिल। कौन कौन हमें सुन रहा है, कौन कौन जुड़ा हुआ है इस वक्त हमारे साथ, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। अनिल जैन, जैन साहब,

संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मालियान सरधना मेरठ से। और इसी के साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी हमें सुना जा रहा है इस वक्त। और कौन सुन रहा है वहां पर, नाम कहाँ है जनाब? मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज और राधा नामदेव हमें सुन रहे हैं इस वक्त लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और एक बड़े ही खूबसूरत गीत की इन्होंने भी फरमाइश हमें लिखकर भेजी है। चलिए इसी के साथ अगला मैसेज शामिल कर रही हूँ राजेंद्र कुमार जी का। राजेंद्र जटोलिया इनका पूरा नाम है, उषा जटोलिया जी के साथ इन्होंने ईमेल किया है नागलोई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, जुड़े रहिए, गाने इंजॉय करते रहिए और सुनते रहिए हमारी बातें। और आप भी कहते रहिए अपने दिल की बात, कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ बढ़िया, कुछ ऐसा जो मुझे पढ़ने में और आपको सुनने में मजा ही आ जाए, है ना। चलिए अगला मैसेज शामिल कर रही हूँ भागवत वर्मा जी का। शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा इनके साथ शामिल हैं। दतरेंगी से इन्होंने ईमेल किया है और किसी भी गीत में शामिल ये होना चाहते हैं। तो चलिए फिर अगले गीत में आपको हमने कर लिया शामिल और आप ही क्यों, हम सब हैं शामिल। हालांकि फरमाइश इस गीत की हमें लिखकर भेजी है फारूक, शाहरुख, शहनाज, शबनम और चीकू ने नजफगढ़ जय विहार से। आशा जी की आवाज है, फिल्म का नाम है दो बदन, गाना बहुत खूबसूरत है।

और आप भी कहीं मत जाइएगा एफएम गोल्ड और हमारा साथ छोड़कर. मैं लगातार आपके मैसेजेस प्रोग्राम में कर रही हूँ शामिल. देखिए नाज जी, हम एक ही मैसेज करते हैं प्रोग्राम में जो कि शामिल नहीं होता, फिर मजबूरी में हमें 4-5 मैसेज करने पड़ते हैं, फिर आप शिकायत करती हैं कि इतने सारे मैसेजेस एक साथ मत भेजिए. बात तो जायज है, लेकिन जनाब अगर सभी सारे लिसनर्स अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा. इसीलिए नाम रिपीट हो जाते हैं, हमसे गलती हो जाती है और कुछ नाम शामिल हुए बिना रह जाते हैं. बहरहाल ये मैसेज हमें भेजा है सलीम अख्तर साहब ने, रेशमा बेगम अलीगढ़ से ये मैसेज भेजा है. और इसी के साथ चलिए अगला मैसेज भी हम शामिल कर लेते हैं कि दूरियां कितनी भी हों दिल कभी जुदा नहीं होते, सच्चे दोस्त वक्त के बदलने से कभी

वफा नहीं होते। यूं तो मिल जाते हैं महफिल में हजारों चेहरे, पर जो जान छिड़कते हैं वो बार बार पैदा नहीं होते। क्या बात है। भारत भूषण जी का ये मैसेज व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष इनके साथ शामिल है। अगला मैसेज गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या इसमें शामिल हैं और इन्होंने भी बड़े खूबसूरत गीत की हमें फरमाइश लिखकर भेजी है। हम भी कार्यक्रम सुन रहे हैं लेकिन हमारा मैसेज अभी तक शामिल नहीं हुआ। भवरपुर बसना से कह रहे हैं राधे श्याम देवांगन और इनके साथ चंपा देवांगन जी भी। देखिए अब तो हमने आपको शामिल कर लिया, उम्मीद है अब आपकी नाराजगी दूर हो गई होगी। और देखिए हम तो प्रोग्राम का सुबह से इंतजार करते हैं और आप मैसेज शामिल ही नहीं करते। हमारा गीत भी आपको पसंद नहीं आया या फिर हमारा नाम पसंद नहीं आया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जयराम खोरवाल जी का ये मैसेज, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल इसमें शामिल हैं। होली चौक उत्तम नगर से आ चुका है जी आपका मैसेज। और अगला मैसेज बिट्टू भाटिया जी का, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया भी इसमें शामिल है। सब्जी मंडी झज्जर से भेजा है ये मैसेज और इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखा है। देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो आप भी मेरी मान सकते हैं कि कुछ भी ऐसा लिखकर भेजिए कि नजर ना बस हट ना पाए मेरी, इस बात का आपको ख्याल रखना है। कुछ शेर व शायरी या कोई भी ऐसी बात जो मुझे मजबूर कर दे आपके मैसेज को पढ़ने के लिए। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। इसी के साथ अगला मैसेज हम शामिल करते हैं संदीप मक्कड़ जी का। दिल्ली वाले हैं ये, पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से, और इनके साथ शामिल हैं ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और धर्मवीर जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल मोहन जी ने भी ईमेल हमको भेजा हुआ है और लिख रहे हैं कि शानदार प्रस्तुतीकरण है, प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक के साथ इन्होंने हमें भेजा है ये मैसेज। और डॉक्टर आशीष जी का भी मैसेज आ चुका है हमारे पास। डॉक्टर आशीष मल्होत्रा इनका पूरा नाम है, सुनील पाठक, कमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक इनके साथ शामिल हैं। एक बड़ा ही खूबसूरत गाना ये सुनना चाहते हैं। और चलिए अब व्हाट्सएप का हम रुख करेंगे। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां का भी मैसेज हमारे पास आ चुका है और ये किसी भी सदाबहार गीत में शामिल होना चाहते हैं। इसी के साथ हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, शायद आज वो खुशी मिल जाए जिसका इंतजार दिल को कल से था। इशारा मैं समझ गई आपका। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू ने ये मैसेज भेजा है, तो शायद कल इनका नाम शामिल नहीं हो पाया था लेकिन आज हो गया, तो जाहिर है ना उम्मीद आपने लगाई और वो पूरी भी हो गई। चलिए इसी के साथ अगला मैसेज हम अब शामिल कर रहे हैं। ग्राम नागर कोहरा राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से आया है ये मैसेज, बड़ी दूर से आया है। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू इसमें शामिल हैं और लिख रहे हैं कि मैम जी सब प्रेम नमस्कार, बहुत ही मीठी और प्यारी आवाज है आपकी और प्रोग्राम शानदार चल रहा है, शुभकामनाएं। हमारी ओर से भी आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरे, एक अच्छे जीवन की, एक स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं हमारी ओर से। और नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, पिंटू दीवाना, संजय मालाकर, शबाना भारती दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमें मैसेज भेज रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इन्होंने शिकायत भी लिखकर भेजी है कि आपके प्रोग्राम में आज तक हमारी पसंद का गीत नहीं चला। मसला तो गंभीर हो गया क्योंकि वक्त अब बहुत कम बाकी है, एक ही गाना मैं प्ले कर सकती हूँ। चलिए आपसे वादा रहा, अगले प्रोग्राम में आप जितनी जल्दी ईमेल करेंगे या जितनी जल्दी व्हाट्सएप करेंगे मैं उतनी जल्दी आपका गाना चलाऊंगी, पक्का वादा। ठीक है चलिए अगला मैसेज शामिल कर रहे हैं हम हरजिंदर जी का, हरजिंदर शिंदा जी का शामिल कर लेते हैं, माफ कीजिए हरजिंदर छिंदा जी इनका पूरा नाम है। जसवीर जसी, सीता और गीता गांव नथाना भटिंडा से हैं ये और इन्होंने भी बड़ी अच्छी बात लिखकर भेजी है कि

ध्यान दीजिएगा, बड़ी गहरी बात है। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वो कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर वो खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, अपने परिवार से बंधे रहिए। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात, दिल खुश कर दिया आपने। इसी के साथ गिरीश बाम जी का भी मैसेज मुझे नजर आ रहा है, वडोदरा गुजरात से इन्होंने भेजा है मैसेज, और वैशाली बाम इनके साथ शामिल है और आजिक्य बाम भी इनके साथ शामिल है। उम्मीद है मैंने नाम सही पढ़े हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग्स जुड़ी हुई थी इसलिए मुझे दिक्कत हुई। और अगला मैसेज चलिए अब शामिल करते हैं जल्दी से बिना देरी किए, सुरेश नारंग जी का, और सहारनपुर से भेजा इन्होंने मैसेज। सोनाली नारंग और आशा नारंग इनके साथ शामिल हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में और बने रहिए हमारे साथ। अंकित कांगड़ा जी ने भी मैसेज भेजा हुआ है, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बॉट, सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा इनके साथ शामिल हैं। कहां से भेजा है मैसेज, हरियाणा से भेजा है, आपका भी बहुत बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है आप प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे होंगे। और अगला मैसेज जो मुझे इस वक्त नजर आया है, शैलजा जी इनका नाम है और नीम राणा से इन्होंने मैसेज किया है, और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है, किशोरदा की आवाज़ है, इसे ये सुनना चाहते हैं। और जल्दी से कुछ और मैसेज भी मैं शामिल कर लेती हूँ। हम गांव बान्ना जिला नैनीताल उत्तराखंड से हमें सुन रहे हैं इस वक्त, भास्कर पलड़िया, पवन पलड़िया, हम दो भाई हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत ये सुनना चाहते हैं। और इसी के साथ चलिए अगला मैसेज जो मैं शामिल करने वाली हूँ वो है इरफान खान, इमरान खान और रजाक मोहम्मद शमीम बेगम जी का, और कहाँ से इन्होंने मैसेज भेजा है, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से भेजा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ एक और मैसेज पंकज मोहोड़ जी का, अमरावती महाराष्ट्र, गुड मॉर्निंग मैडम, और आकाशवाणी FM गोल्ड हम लगातार सुनते हैं, आपका प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, थैंक यू सो मच अपनी शुभकामनाओं के लिए। और चलिए दोस्तों अब चूंकि घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है तो मुझे एक फरमाइश और पूरी करनी होगी, मुलाकात आपसे अब होगी ठीक 11:10 पर, बने रहिएगा साथ क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत जगह आज आप मेरे साथ चलने वाले हैं। और फिलहाल सुनिए ये खूबसूरत गाना फिल्म वंश से, लता जी और SP बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज, संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या, सविता भाकरे, शाहजी नगर, बेंगलुरु, नांदेड़, महाराष्ट्र से आई है इस गीत की फरमाइश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित एआई इंपैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत ईएफटीए प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। ईएफटीए देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। वे आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। 3 दिन की यात्रा पर राष्ट्रपति पामला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। 4थे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब उसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार तथा निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पगांव बंदरगाह तक ले जाया जाएगा। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा जा रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। आज नई दिल्ली में जर्मनी के नेताओं के साथ बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत रुक गई है। उन्होंने कहा कि विचाराधीन समझौता एक कठिन और गहन बातचीत के बाद तैयार हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। रक्षा मंत्री

स्थापना सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गुरु नानक देव जी के ज्योति ज्योत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के माध्यम से दुनिया को सत्य, करुणा, मानवता और सद्भाव का संदेश दिया। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिजाओं में कुछ ऐसा खुमार है कि हर सांस में एक नया करार है। यूं तो देखे हैं हमने कई खूबसूरत नजारे, लेकिन इस शहर की हवाओं में कुछ अलग ही प्यार है। और इसी प्यारे से एहसास के साथ मैं यानी नाज एक बार फिर करती हूँ आपका इस्तकबाल, और साथ ही कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार भी। घड़ी का है इशारा कि वक्त हो चला है 11:11 और 45 सेकंड्स, और जैसा कि आप जानते ही हैं, ये वक्त है आपके फेवरेट शो यानी तस्वीर का। और आज जिस जगह की तस्वीर हम निहारेंगे, सही मायने में ये अपने आप में एक मुकम्मल कविता है। मध्य प्रदेश चल रहे हैं और वहां के इकलौते हिल स्टेशन जिसे बड़े प्यार से कहा जाता है सतपुड़ा की रानी, बस वहीं घूमेंगे फिरेंगे और करेंगे सैर पंचमढ़ी की। तो चलिए फिर करते हैं इस सुहाने सफर की शुरुआत विद दिस हसीन मौसम एंड दिस ब्यूटिफुल ट्रैक आल्सो इन मुकेश जीज मेलोडियस वॉइस।

तो बादलों से बातें करती पहाड़ियां, कल कल करते झरने और घने जंगलों की वो रहस्यमयी शांति जो शहर के शोर शराबे से बहुत दूर है, आपको ये सब मिलेगा यहाँ यानी पंचमढ़ी में, जहां पहुंचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो पिपरिया रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक रहेगा, जो पंचमढ़ी से करीब 50 से 55 किलोमीटर दूर है। वहां से आप टैक्सी या फिर बस ले सकते हैं। फ्लाइट से आना हो तो भोपाल और जबलपुर एयरपोर्ट्स बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके लिए।

लेकिन अगर मेरी माने तो सड़क के रास्ते यानी रोड ट्रिप के जरिए पंचमणि तक पहुंचिएगा, क्योंकि जंगलों के बीच से बलखाती हुई सड़क का जो सफर है ना, यकीन मानिए बड़ा खूबसूरत है।

जी हाँ, खूबसूरत पंचमढ़ी की सैर पर निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ, जहाँ की नेचुरल ब्यूटी हमें सिखाती है कि कैसे शांत रहकर भी बेहद खूबसूरत और असरदार हुआ जा सकता है। बात करें इस जगह के इतिहास की तो पंचमढ़ी की खोज साल 1857 में ब्रिटिश अफसर कैप्टन जेम्स फोर्सिथ ने की थी। लेकिन इस जगह के नाम यानी पंचमढ़ी से जुड़ी एक और कहानी या फिर वजह है, इसका इतिहास और भी पुराना है। दरअसल पंच यानी पांच और मढ़ी यानी गुफाएं। तो मान्यता यह है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इन्हीं पांच गुफाओं में बिताया था और इसीलिए उन गुफाओं को पांडव केव्स यानी पांडव गुफाएं और इस जगह को पंचमढ़ी कहा जाने लगा।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए, रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, यांत्रिक, नाविक, जनरल ड्यूटी, नाविक, डोमेस्टिक ब्रांच एवं हाइजीनिस्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जानकारी के लिए विजिट करें www.ssc.gov.in।

स्वागत है आपका एक बार फिर। ट्यून किया हुआ है आपने आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल, जहां मैं यानी नाज करवा रही हूं आपको मध्य प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन खूबसूरत पंचमढ़ी की। अच्छा, पंचमढ़ी आए और यहां के झरनों में नहीं भीग पाए तो समझ लीजिए ट्रिप अधूरा रह गया आपका। यहाँ का बी फॉल सबसे ज्यादा मशहूर है। जब ऊपर से पानी की बूंदें आपके चेहरे पर गिरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खियां डंक मार रही हों। अरे अरे घबराइए मत, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको, बल्कि इसीलिए इस झरने का नाम जो है वो बी फॉल पड़ा हुआ है। इसके अलावा रजत प्रपात यानी सिल्वर फॉल भी है यहाँ, जो ऊंचाई से गिरते वक्त बिल्कुल पिघली हुई चांदी जैसा चमकता है। और हाँ, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी तो यहीं पर है। यहाँ से सनराइज और सनसेट का नजारा आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो दो नजारे हैं ना दिन के, ये ऐसे लगते हैं मानो पूरा आसमान एक कैनवस है और उस पर कुदरत की कमाल की कलाकारी के हम गवाह बने हुए हैं।

तो भाई सुबह हो या हो शाम, पंचमढ़ी का हर नजारा आप इंजॉय करने वाले हैं। और चलिए इस सफर को अब थोड़ा सा आध्यात्मिक और एडवेंचरस भी कर लेते हैं, क्योंकि ये जगह सिर्फ अपने खूबसूरत नजारों या फिर हरियाली के लिए ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्राचीन मंदिरों के लिए भी जानी जाती है। यहाँ की जटाशंकर गुफा और महादेव गुफा के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। यहाँ मौजूद चट्टानें बिल्कुल भगवान शिव की जटाओं जैसी दिखती हैं। पहाड़ों के बीच ठंडी गुफाओं में जब ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है तो मन की सारी थकान छूमंतर हो जाती है।

अच्छा खूबसूरत नजारों और खूबसूरत गानों के अलावा भी थकान मिटाने का एक और बेहतरीन तरीका पता है क्या है? बिल्कुल सही, अच्छा खाना। जी हाँ, मध्य प्रदेश में फिर आप कहीं भी जाइए, पोहा जलेबी ना खाइए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुबह सुबह पंचमढ़ी की ठंडी हवा और गर्मा गर्म पोहा जलेबी एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा यहाँ आपको ऑथेंटिक दाल बाफला और मालवा का मशहूर भुट्टे की कीस भी चखने को मिलेगी, और पहाड़ों वाली वो गर्मा गर्म धुआं छोड़ती मैगी, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो चलिए फिर इसी जायकेदार बात पर हो जाए ये अगला खाने वाला गाना।

तो पापा जी ने आपको बता ही दिया है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो चलिए अब मैं भी आपको बता दूं कि पंचमढ़ी किस मौसम में आपको जाना है। वैसे अक्टूबर का ये जो महीना है ना, पंचमढ़ी घूमने के लिए एकदम परफेक्ट है। मॉनसून के ठीक बाद यहाँ की हरियाली इस वक्त अपने पीक पर होती है। जंगल बिल्कुल धुले धुले और साफ नजर आते हैं। बस एक छोटी सी टिप है मेरी तरफ से कि जब भी आप पंचमढ़ी आएं तो अपने साथ एक अच्छे ग्रिप वाले स्पोर्ट्स शूज जरूर रखें, क्योंकि यहाँ के शानदार पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रैकिंग भी करनी पड़ सकती है। और हाँ, अक्टूबर की शामें यहाँ हल्की ठंडी होने लगती हैं, तो एक लाइट जैकेट भी अपने साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी तो बस नेचर को एंजॉय कीजिए और दिल खोल कर मुस्कुराइए और गाइए ये वाला गाना।

एक और खूबसूरत जगह है यहाँ यानी पंचमढ़ी में, जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। अगेन ये भी एक वाटरफॉल ही है और नाम है इसका अप्सरा विहार। इस जगह को फेरी पूल यानी परियों का पूल भी कहा जाता है। यहाँ पानी एक उथले कुंड में जमा होता है और पूरे परिवार यानी खासकर बच्चों के साथ पानी में खेलने और मौज मस्ती के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा एडवेंचर के शौकीनों के लिए यहाँ डचेस फॉल भी है, जिसका पानी 3 अलग अलग लेवल्स पर गिरता है और यहाँ पहुंचने के लिए आपको लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग भी करने को मिलेगी। अच्छा, शाम के समय अपनों के साथ वक्त बिताने और बोटिंग का मजा लेने के लिए आप पहुंच जाइए पंचमढ़ी झील। और वाइल्ड लाइफ को अगर करीब से देखना चाहते हैं तो पंचमढ़ी से लगे सतपुड़ा नेशनल पार्क जरूर हो आइएगा और जंगल सफारी का लीजिएगा भरपूर आनंद।

इतनी खूबसूरत जगह यानी पंचमढ़ी आए हैं आप, तो जाहिर है वापसी में अपने घर वालों और दोस्तों के लिए क्या लेकर जाएं? ये सवाल आपके मन में जरूर आएगा। तो जनाब, इस सवाल के जवाब में आपको बता दूं कि पंचमढ़ी का अपना कोई टिपिकल कमर्शियल बाजार नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ से आप बिल्कुल प्योर और ऑर्गेनिक लोकल हनी यानी जंगली शहद अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की चिरौंजी भी पूरे देश में मशहूर है। लोकल मार्केट्स में आपको ट्राइबल कारीगरों द्वारा बनाए गए बांस के बेहद खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स मिल जाएंगे, वो भी जरूर खरीदिएगा, जो न सिर्फ आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि इन्हें खरीदकर आप पंचमढ़ी के लोकल कलाकारों और उनकी कारीगरी को भी सपोर्ट करेंगे।

रेडियो में 97.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अक्टूबर महीने की 5 तारीख और दिन है सोमवार। श्रोताओं, आकाशवाणी के तवांग केंद्र से हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है। अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी कक्ष में उपस्थित कार्यक्रम सहायक श्रीमती संगीत सोमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूतन बोरा, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अच्युत बर्मन, श्री हेमंता स्वर्गीय और श्री तानिंग ताको, मोनपा में उद्घोषक श्री थुतन ताशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी वंगमो। कार्यक्रम सुन रहे आप सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।

आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का दावांग केंद्र है। श्रोताओं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी दोपहर 2 बजे आप सुन सकेंगे मीटे न्यूज के तहत अंग्रेजी में समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:15 पर सुनिएगा दोपहर समाचार के अंतर्गत हिंदी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
1: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
2: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी, कहीं भी, expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप

0: जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
1: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
2: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
1: There are rooms to operate from, both sides would do it.
0: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
2: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
3: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
4: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
3: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
5: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
3: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी

किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ

0: सदस्यीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। आरबीआई के नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के और बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की, कहा यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तावांग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, आप प्रस्तुत है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत आइए सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत।

श्रोतव्य सुन रहे थे अनुप जलोटा के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही दैनिक कार्यक्रम वंदना भी पर समाप्त होता है। मीटर मीट के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता समय दोपहर के ठीक 3 बजे है और अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों की गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसके अंतर्गत आइए आनंद लेते हैं जिसमें दुर्जी और साथियों से लता के लोकगीत। तो आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: श्रोता व्यापार ले रहे थे जिग्मे दोरजी और साथियों से लता की लोकगीत। इन्हीं गीतों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अभी पर समाप्त हुआ। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं समय दोपहर के 3:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी बात। कार्यक्रम मेरी बात में ये सुनते हैं दोरजी खांडू कॉन्वेंट कॉलेज तवांग के 5th सेमेस्टर की छात्रा तंजिन सोमो से इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ यानी जीवन में अनुशासन का महत्व विषय पर दिए गए संदेश।
1: आकाशवाणी तवंग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरी नमस्कार। मेरा नाम तंजिन सोमो है। मैं दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवंग में 5वीं सत्र की छात्र हूँ और आज जीवन में अनुशासन का महत्व पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगी। अनुशासन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। अनुशासन का अर्थ है सही समय पर सही कार्य करना, नियमों का पालन करना और अपने व्यवहार आदतों को निरंतर रखना। यह केवल दूसरों के बने नियमों को मानना नहीं है बल्कि स्वयं को सही दिशा में चलाने की कला है। आज के समय में जहां हर जगह आकर्षण और विचलन मौजूद है वहां अनुशासन की अवस्था और भी अधिक बन जाती है। सबसे पहले अनुशासन व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है। एक अनुशासित व्यक्ति सोच समझकर नियम लेता है और भावनाओं को प्रलोभनाओं के कारण गलत कार्य नहीं करता। जैसे कि एक अनुशासन छात्र समय पर उठता है, नियमित रूप से स्कूल जाता है, रोज पढ़ाई करता है और अपने कार्य समय पर पूरा करता है। धीरे धीरे यह आदत उनके अंदर ईमानदारी, समय के पाबंदी, जिम्मेदारी और मेहनत जैसे अच्छे गुण विकसित करती है। अनुशासन का दूसरा बड़ा महत्व यह है कि यह हमें सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, बिना अनुशासन के प्रतिभा बेकार हो जाती है। बड़ी उपलब्धियां सफल वही लोग होते हैं जो अनुशासन होते हैं। वे एक योजना बनाता है, उस पर रोज काम करता है और कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। अनुशासन उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने की शक्ति देता है। छात्र जीवन में अनुशासन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अनुशासित छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करते हैं और परीक्षा की तैयारी नियमित रूप से करते हैं। उन्हें समय का मूल समझ में आता है और वे अनावश्यकता कार्य में बर्बाद नहीं।

0: करते। अनुशासन छात्र के व्यवहार को भी सुधारता है, वे शिक्षकों का सम्मान करता है, स्कूल के नियमों को पालन करता है और सहपाठियों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। इसके शिक्षा के वातावरण शांत और सकारात्मक बनता है। व्यक्तिगत जीवन में भी अनुशासित व्यक्ति हमेशा स्वस्थ आदतों का पालन करता है, जैसे समय पर उठना, समय पर सोना और खान पान, नियमित व्यायाम और साफ सफाई बनाए रखना। ये आदतों हमें तनाव और बीमारी से दूर रखते हैं। एक अनुशासित परिवार हमेशा शांतिपूर्ण और एकजुट होता है। इसीलिए अनुशासन केवल व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। इसी के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आपने सुना दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज दबांग की फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र मिस तेंजिन सोमो से इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, यानी जीवन में अनुशासन का महत्व विषय पर दिए गए संदेश। श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात समाप्त हुआ। मीडियम एप के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का दबांग केंद्र है। श्रोताओं, समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए कार्यक्रम का पहला नगमा ये सुनते हैं दिल्ली 6 फिल्म से मोहित चौहान के स्वर में। परोसन जोशी के लिए इस गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने।

0: श्रोताओं, सोनू निगम, कुणाल गंजावाला और सुजुकी के गायक फिल्म पार्टनर के इसी नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनने से पहले ये सुनते हैं यह संदेश।
1: पापा, ये सब
2: जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
1: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी।
2: अरे ये कैसे रह गया?
1: पैसे गए?
2: नहीं नहीं नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
1: दादू ये
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सही कह रहा है।
0: मीडियम में 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज और FM फ्रिक्वेंसी 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। गीत मंजरी कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए पहला नगमा पेश है शुद्ध देसी रोमांस फिल्म से सोनू निगम और मोहित चौहान की युगल आवाजों में। जयदेव शैनी के लिए इस गीत को संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

14 कार्यक्रम का अगला नगमा अयानत लेते हैं मोहित चौहान, शिया घोषाल और न्यूमन की आवाज में आरक्षण फिल्म से। इस गीत के गीतकार है परोसन जोशी तथा संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

अरिजीत सिंह की आवाज में श्रोता भी अपने आनंद लिया। सनम तेरी कसम फिल्म से यह खूबसूरत गीत। इस गीत के गीतकार थे शफीर कुमार तथा संगीतकार थे हेमश रेशमिया। श्रोतों कार्यक्रम का अगला नगमा आइए हम आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान और श्रेया घोषाल के युगल आवाजों में फिल्म किस्मत कनेक्शन से। शफ रचना शहीद कदरी के है तथा मौशी की प्रीतम का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना पपून की आवाज में दुम मारो दुम फम से या नगमा। इस गीत के गीतकार थे जयदेव श्यानी तथा संगीतकार थे प्रीतम। श्रोताओं, इस समय आप आनंद ले रहे हैं चंद हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए अगला नगमा ये सुनते हैं पपून की आवाज में मद्रास कैफे फिल्म से। इस गीत के गीतकार है अली हयात तथा संगीतकार है शांतनु मोहित्रा।

संगीतकार सचिन जिगर के संगीत निर्देशन पर पापोन और सचिन जिगर की आवाजों में कार्यक्रम का अगला नगमा आनंद लेते हैं फम पाला से। इस गीत को लिखा है भार्गव पुरोहित ने।

शो तो कमाल खान के गाए फिल्म द डर्टी पिक्चर के सीन नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा कुछ अंतराल के बाद।

आपके सेवा में यह आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोता, समय संध्या के 4:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम राग रंग। राग रंग कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है वीजी जोग से राग श्याम कल्याण पर वोलिन वादन तथा तबले पर साथ दे रहे हैं श्यामलाल बोस। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे वीजी जोक से राग श्याम कल्याण पर वॉलिन वादन तथा तबला पर साथ दे रहे थे अरुण घोषाल। श्रोताओं इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अभी पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अब से कुछ ही पलों में यानी 4:45 पर सुनिएगा हिंदी में समाचार। तत्पश्चात 4:55 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: कृपया मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलास के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, ये व्यापार समझौते पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो स्थित सेंट क्लारेट कॉलेज में जीरो बर्ड एंड बटरफ्लाई फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशियंट ट्रेडिशन कल्चर एंड हेरिटेज यानी रिवॉच द्वारा नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सहयोग से खिजिंदी में फ्रॉम वॉइस टू स्क्रिप्ट परियोजना के कार्यान्वयन पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित। और भारत ने जापान में एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी के स्वर्ण पदक जीत कर 85 पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र से सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पहमला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा है कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौतों को लागू किया।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा है कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
1: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान

0: के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: इससे पहले राष्ट्रपति पहमला ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पहमला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पहमला को राष्ट्रपति भवन में 3 दिनों के सेनाओं की गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक 3 और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद रखता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि नया प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत करना प्रयास जारी किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो स्थित सेंट क्लारेट कॉलेज में जीरो बर्ड एंड बटरफ्लाई फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही क्षेत्र में 72वें वन्यजीव सप्ताह समारोह भी शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र के बाद महोत्सव 3 दिनों के लिए ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पांगे क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पक्षियों और तितलियों के अध्ययन एवं निगरानी के साथ साथ उनके संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां की जाएंगी। ये महोत्सव DFO टाकर की पहल है और लोअर सुबनसिरी उपायुक्त ओली परमे के सहयोग से स्थानीय समुदाय के हितधारकों के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है। DFO के नेतृत्व में हापोली वन प्रभाग ने स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए समुदाय को प्राथमिकता देने वाला दृष्टिकोण अपनाया है। अरुणाचल प्रदेश स्थित रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड्स एंशियंट ट्रेडिशन कल्चर एंड हेरिटेज यानी रिवॉच ने नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA के सहयोग से गत 3-4 अक्टूबर 2026 को खिजिनली स्थित रिवॉच कॉन्फ्रेंस हॉल में फ्रॉम वॉइस टू स्क्रिप्ट परियोजना के क्रियान्वयन पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें सोजोलांग और तागिन जनजातियों के सामुदायिक प्रतिनिधियों, भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य दोनों जनजातीय भाषाओं के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और उन्हें सशक्त बनाने के लिए व्यवहारिक रणनीतियां विकसित करना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि दोनों पक्षों के एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही, बल्कि वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा कि ये व्यापार समझौते पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे भी समझौतों की जननी बताया है।
2: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
1: पठानकोट परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड का मैंथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाओं बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश पेट्रोकेमिकल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री तखेन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के श्री साहू ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ और सतत और रहने योग्य बनाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एक तरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती

0: मीडियम वेव किलो हर्ट्स कैचल खिलती मीटर ज्ञान खेल बिजनेस का उज आकाशवाणी तवांग इमुर लंगे छमा नब्दे सुजलनी दमिंग आकाशवाणी तवांग देश नब्देक मनपाक लेरम बनाम कजुदुर लेरम संगन लंगे छमा शिलना चे थुदन तशी सी छमरी तशी दिल येदुर देशी छिलुंग खेलग्रो लोक छिंदा चुबक तरीक लेंगे बोई गेलो नितों गेनन खेने चुसुम रबने मेता लोग बोई दब गेबक निश लेंगे रेज दब इंबुर आकाशवाणी तवंक लेरिम बनांग एफएम फ्रिक्वेंसी गेनन ब्ली मेगाहर्स का ये सन में तो इंबुर लंगेनों दा मनपल लेरिम को दांप नमथर लेरिम चितको चुदुर देश उद लेरिम बा तवंग गुनपक लोबन जुर्बा लामे के संग नुर्बुसी बे छेदन कक लगे निंग तमशे कुर शुसु गोरिम दाहपची सन्नासा
1: हाँ दादे तवांग ओल इन योरी रुग मारे यांग सी अने मदम तुमलिंग न्या ने माम दे नो न्या गु ने दा खेबर थिंशो थी जगर तोर्जितन न्यासी मुर इजिक शुजे दा बे छोटिन न्यासी इतने चिक दा ने न्या को बिने चा थिंशो दे नो मुर इजाक बुर मादांग दाव जो गांजे नंबसंग ये छे गो बिने खे लोंगन दिने देवे याकन दे इनु लिते न्यासी गांजे आने दा न्या गोरा माम दे पेप दो मुर इजाक बुर दा देशी शुजुक तो जी बे छोटिन को चिक मार लुक जी रुप जी शुनासम एहिन इजाक बुर दा नादा रंग एमा हो न्यासी बिने छे गो लोंगो ट्रिगो सुम न्या नो न्या गो चिकुल लंगु ट्रिगु सुम जिसे नादा रंग दंग छा जे नि सोन दा गुसु बिस इजाक बु चिकु नवा थायला ने सोन दे गुसु नि छा जे गुसु या चिकु नवा थाय नि जि सुशे जुरु लो इने संग ये नवा थाय नि रुम संग ये वबा मि ये जे जुरु मु इजा इजु जु जे लंगु थुजि छिम मु जे चिक सोन दा गुसु नि छा जे या गुसु जि लंगु थुजि छिम जि जेंदे जे छा दंग जंग दंग मु इजु जु जे ट्रिगु बे मे जुने जि जलो मेबुटे लोक टेदे छे चिजिक सुमजे पे सामे मिजुल हुन दुबे अनि चुला खांग बारगांग छिनबुक न्याजे छिजे मिबंग निजु चेंगा नि लामा यांसांग थु जे दुबे अनि वांगुल छिमदे जे नामुक दुजे ते जावरुक थु बेने देने सुसु लोबन बेम जुने इमबु इजे बिनाशिया यारदा दंजिनिना मनजे एजे बजन गुजिक या इजिक त्यांजे लोबरम जे यारजु dāt lōpār rīma jī xe nādā rāng yār sēr kio nāng gūnchāng kāng yā jīg chāk dō pūy yīchī ngā tāng yīt kī mā tsa dō ngā tāng jīg dīng kā mā nā sē nā tsok bā sī nō dī kāng bī yār bī nāng xe yār pūy dēn dāng yīchī kī mā tsa dō dā bī nāng xe yār pūy jī jī bī nā jē gul yū kār wā dōng jī tōk dāng yāk sī yū nā yū nī shū tā

0: डॉक्टर संगीत और वो ना ये मगो लेखों फिर से व गया था या कोसो हिनम व मंजू गया या थम हिनम डिस्ट्रिक्ट मन खा मंजू या मैं तो थोकिन चेसे से नो हिनम इजु को डॉक्टर साहब बिना है ना ये ना नंबर सिंदर दत्त डॉक्टर साहब बिना है ना ना उचित ना लो खा शे गेउ लेतिन या ताउ दा दिशो सो बिना ने में ताउ दे चेरी कोसो गोगा ब्रस या को दा मा ता टेंटल का कंगे बाची ना मजे दोंदा ची इंबो सिंदर ता मन खा लेखो है ना थुजे बाची ना सलो दे यार ये गे बोले थे बिना ब्रिज थोर मंजू या मते थोपसी से डॉक्टर रो दो बोल इजे को दा डॉक्टर साहब बिना शंगे ना दा चे ओसो मो को लेम थोदे लप जी क्यू या टेक नि शुना दा इना ना या ना बोले बिना दा पेशेंट ची ती लंग क्रिसि दे डेंटल केस मा पियो बोले चो चो थर्म मटेरियल या कंगे थी दो ये ना ना तने गाय ये ना डेंटल सर्जन ना था इना बोल गा तो डिस्ट्रिक्ट का इजे को दा तोमर माप थी बिना दा इना थीसी डेंटल सर्जन जे काप सोंग या केना गा चाले ना बोल दा तो बिना तो डॉक्टर केसन सो मो ना को चारो बो नोम जिन दरे ना दा मजु मो तो जे इना दा तोमे सुम जिला इना गा थीसी गा दा पेशेंट उ सुक्सन दे गा दा डिस्ट्रिक्ट ने थीस बिना दा थर्म मजे या कोसो इमो निंग सिरंग खादा लाप जे थोंग सो जे गा इना ना बोल या बो दा दिनो तेगो सो रन दा ओ डॉक्टर दा ते दा लंगे ने नो बोल या बोदा प्लांग दी जे पेशेंट कोलु मो तो दे जा से ती को दुजो रो दुर इजिक ता केस मंगशो मो तो दे दोनो सिउन दो ना दा इजिक को दे दा मे इजिक ला
1: लसना दा नोम जुन जे ओ तो पेशेंट यों तो यो यो रोन बोल छिन दे मन ने से दे का ती मा तो सब दा दे चिले ते रो दे सा जा ने जिक जो ना पना से ना मार ती सर जे यान सिक ती बिर ओ ने शत इन मे जिक ये दे ता से खेलों खेले ने ने सिक दुसत का तो मन कम कोचो दे ते मा सर ने ट्यूमर की मुनी जिक मिना पे ता शत ती ब्रन ती से शत ती नोर ना ने पुर ते रे हो या दो इत मे नु को जिक ता ओ जिक दा माना माना दा वा बने खसो इजिक क्यू ने चिराम जे इजिक जु जे जिक वाय मंग लास ऑफ ने उन तो ना ना पे माप ती होन नंबर इजिक जान ने जे खाने जान नो ने मत ती हो योर ती होन नंबर सिंदरे उत ने चिराम मंग दा जिक जान मे का कैंसर ने ओजना ने कोन ने देर देर का तो मन नो जिक ओय ला दिम दा
0: ले सो ओ तो ट्रीटमेंट जे तंगे डिजीज ला दे नंग दो इजिक को दे नंग इजिक
1: मन जे जे दा जिक वांग मो ता रिंग को नो ने का देर का क्रेंग जे या ने जिक ना मन बी या या मु सिंदरे
2: ཁྱི
0: डेंटल सर्जन था उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मेनो ताओ शन में कच्चे कच्चे नो नम इजिक ता पेशेंट मार तबु शोवा किंबो थोर फैमिली गांव सुम शोवा किंबो और उसको ने मार गया या उन्होंने थोर जंग शोका ने मार लुम्ला शो निंग उन नंग तेरे ता डॉक्टर सोई नो वागे नो
1: ता गाता तो आ उस हर डॉक्टर नहीं निंग इजिक मेनो रा ता किट पे डॉक्टर थी नंबर लोवा थी नंबर जंगा थी नंबर लुम्ला थी नंबर इजिक भोजनांग वाला का कौन क्या मार क्या देगा निखाम प्रॉब्लम नेलो रा नंबर इजिक ता ta jo ondo wa nyen jik na bir she cha la chang mu nu ning it no si zu ang ondo jik bitang ae mena si da o tang ye nga tang national oral health program ye district unit ka district nor la obisa ngoto di adam bo jik monthly report ni ne le rang ore patient wak na bo go ondo nam ka ya ondo nam man je rim ro je zip su nam treatment na ka la che zip su nam it nam ngare report tong do tong bur e je de bur jik mena bir chang ne chang ma lum la kit pe jik ka patient report nam da ondo na bir ye tis ro do चिंता अन्य से ओसो यो ओ तो दिते बिना बिरशे दे चला मुनु बे छि मारशे मुनु चिंता नारु को यूजर चार्ज ला लोंग छि ए या छि के क्लास नियरो तो ए शिडु बो या या दुबो इकि मारशे सिक्ति मारशे नो से छि मारशे जो रेफर ला नि बिरि ए पेशेंट ला तो तिना ने ओतो देर का टीम मात्र को रो दर चिंता बिना बिरि ए के वा प्लानिंग देर का केन सो बियानिंग जे वा मा मा पे ओ नि दे जे मान जे रिम रो बी ब्रे इतना ते नाम दया रो दो
0: यस da dr sabna kena da city thonkin chala do thung ka dakshyo ne tho manjo yak ta ji treatment yak ta ji etanga yak ti yoi ta she nibu no ne yondan do ne na de chala mone ni jiga mo thoi bu ya po da chala ne utun na da na kena city advance treatment yame to

0: 나 지금 세마 누르는 랑 샘주 남다 누야 준비야 내가 여기서네 레스피나 미셰 이제 가나에 양이야 디소지나 넘버 다고야 티비 이제 레스피나 랑에 이제 누 여기서네 왜 이제 교육자는 내 삶도 돈으로랑 또 아예 클리닉 무주문이 말임 자원이네 미버드 마마 깨지메 이 모터 돈으로랑 준비돼 유임선도 내 삶도 지나 지금 라에다 이 시티스 샘주 여기서
1: Doctor Sabina Gardner, I'm bull. The doctor rang in the day, you know, this is a clinic na pee. Labana said, but Liu yet. It also caused him already. They got coffee, they got commissioned, and they make each clothes of Mere. It's been a bishop taught to say, Bisuce, Taricata Bisuce, Doctor Rang in the doctor Rang in the Zukus Mere. So your treatment have been in my Michi and Mere. The private Mujuma Monere. Doctor Sabina Nai, not in a fresh so runners, no pinchy Michi Yakosmina, not in a no touches as Suje.
0: Tak usah pun ini sih, nuk cair brush dia ya, ni ini sih, ni sih, ni sih. Sekarang saya kaya, saya tu bawa brush juga dia cair ni. Cepu, terusnya mana merik be ya? Nuk biar kosong je, hajang dia. Saya pun ini yang bukan anak kiri lagi kaya. Mata mina anak top cair lah saya. Sekarang saya kaya, ya brush tu bawa brush juga dia. Zuhwa kah jalan zuhwa cair zuhwa yurnom. Isian kata ni boleh cuci mukyu zuhwa ni. Isik sian je isik koni kerjanom. Zai ni sih kata wajakan kunci nasi bakteria. Neutinasi na iko kolona es ngene bishe changjue mala dia iji bishe changjue bula jime de bishe topje ju weki ko bishe gonche wa no kyodo ze minum chintare bishe da kon topje ju meje esit ni oji ju esit ji ge jing ngata wazo ju hetu me iji gonne kyasu oim iki no binji minji wa brush ti menu ne da don don nasha do to plus ne iji kut buta ma bya oji tetu bur iji gonche nordum peka tra ta ka meter khelu no Tiada itu mata orang yang ingat tu ni jelah kata tu me. Ijik perhati langkah ti cut ya ijik tahu tu ni tiap nilu ya pergi. Oh ya pergi. Iki liu betul. Iki itu naya ijik makanan la ni ijik kata kalau human kalau dengar lip pergi. Ijik mana private jika kena good plus to kaya tu namnya. Ijik mana dengar ijik YouTube ning Facebook jika nom ika ramai sih. Yakin kaya namnya ti ya ijik kau ni macam mana?
1: Oh
0: ya ijik ni mana dengar kata ijik kaya tu kaya tambah ini. तो केजु दुंजु मोदो थी माके सोया छि रंग वनम डाक्सो से रिम
1: लेस
0: मेनु क्राच तंगे जुक्ता जे जिनी ने ताव ना से मिसे ना से जुर ति जिनी ने वन योंसो मी योंसो ओ मन का ओम प्ले वन ओम चा रा से रा ओ ने तंग का चुना से तो ओ जो मोम ते वन का ति गता वाप चा सो ओ तो चु न्योक नि ngak pa उन तो ना जो वाप चा सो ओ तो कांसिन या पर एजे डॉक्टर से तन गोसो इंजे मिंजे एजे यान छि फीलिंग ला या खतम या जिरा या पेतम जब ती कोने क्या होम थर्स चिक प्लो आपने वांट आरसीटी यान लो मुन्ने
1: लो
0: इति इतने यंसर शिशे एक तनु इन्दा वां मोहम्म सिंह जो हिंची मिंची तन का संगीत है तो वाई माची ना वाई माची का सीनियम क्राजों उन तुम का जो नियम वाई यापुर ने तन ने चिक वाई माना साबे इगा ग्रेको चाप मदा सुर रह नो उन स्केलिंग ने नो इतना यापुर ले चिक वाई माना पे जी ना थे चिक वाई ना रिंग जों इगा साल सोलो जों मायो नम दा रिम इकी ना थे मुझे तन का सु
1: लेस तब वाचो गन तो चिक देशम ने गेजम दिनो मेरे तभी मिना गोम चन ने ना मिना वाच लियो मुनु ने वाशम गु ने ने मिना के जियन पिसे क्यों जमे ओरे नोय के बे गोम का नोय के मे इ जिन बिस तब वाचो देशम ने गेजम ने इ जिक त डर सब तरीका बाती दे सिन गुम हम बता लंग गुम दे वा ने ठासुर ला रहे नोरदिन जी का मन गंग दे को छतो ने तरीका संडे नो ने तना ते छ गले मुकु ने ने दे वाचो चपते कासा कुन दे जो उस पे काम कासा सु मोरे गोद ने सो के पे ने सो न थर्ड प्लेस पे या ने सिटी जाम रश रोद में सिन वाचो छ बे ने सक छ पे रंजना ने सो तुमे इ जब पुते उतन चोन दे बादे कंगा छ तुम ओतला रन नोक छ गवा ने ट्राई दत नोगो ये बला नोगो ये मन का छुटी ने उतन नोला ने ने दे छ बिना टेंपरेरी थप छ जिया में तोरे
0: temporary them she took there then or one at the mul mocha them she ta uga man mul gan na chi antibiotics ni yan malam gan man ni chi pain killer ni ni set net ma shara ma man mul dum bur cho cho sin ni na ko mi na zo man ga re chi ma pharmacy chi na man mul me chi na ta kim chi ga tok tok chen ni chi ko zo man ga nge gan no ro do be ya bi ru sin ni mu nu phi da me ore o ya man na nge ko sa chi no ro chi ga na ngar shi ton cho yan chi ni mi no chi su shi ra doctor su shi ra ti no dental doctor yon ni ton cho yin bur ayan during
1: lesola lesola duje chenni ta desho so doctor sanginor bu ning da do so doctor kesong som ye shuni ta bine ni me so de cheri ko ko khabras eji ko ta desho so warning to you kanga chenga da se to inam eji ta so man kang thoga ge se mina da manje yame to mo thongin chenga da to de sik man ka se se no nam eji ko ta mimang na wa chit net ma sho re yuk ning wat ma sho so yuk ko kaya cha ya ko so inam eji ko ta brush yak ta chenga kaya ko so nam brush bina ge sha ko so inam brush na eta dak sabe nang brush chi nga ta de chamo sakra go yemino nyapra go yemino prega bina bring dino bo ni mata

मीडियम वेव 192.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपके सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा के अंतर्गत आइए हम आपको अवगत करवाते हैं आज के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। आज के शेष कार्यक्रमों में अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:20 पर सुनिएगा दैनिक शिवलिंग में शो बस्ती के अमरंजन पेमा और साथियों से कैप्थो जेमा पोइतो चंद्रशक तोयपा जांगसे मनलम और गोवा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित आज 7:00 सुनिएगा हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आज 7:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण के अंतर्गत पशुपालक स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध उत्पादन विषय पर डॉक्टर जयदेव सिंह SMS एनिमल साइंस केवी के तवांग से हुई एक साक्षात्कार। आज 7:30 पर सुनेगा कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत, इसके अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे फिल्म कट्टी पतंग से किशोर कुमार के स्वर में, कोई मिल गया फिल्म से उदित नारायण और चित्रा की आवाजों में, और वजीर फिल्म से अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाजों में चंद नगमे। आकाशवाणी के जनगण केंद्र से अनुप्रसारित 7:45 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात 7:50 पर सुनिएगा रीजनल न्यूज। आज 7:55 पर सुनिएगा एक देशभक्ति गीत फिल्म गुंजन सक्सेना से अरिजीत सिंह की आवाज में। आज रात 8:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश चंद पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी के ईटानगर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्क्रीन आप सुन सकेंगे रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या, तथा ठीक रात्रि 9:00 आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। आज रात्रि 9:15 पर कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की एक बार फिर जानकारी दी जाएगी। आज रात्रि 9:16 पर आज के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोतों ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं कल यानी 6 अक्टूबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से रूबरू करवाते हैं। हमेशा की तरह कल दोपहर 2:00 मीटे न्यूज के तहत कल का दोपहर सभा आरंभ होंगे। कल दोपहर 2:15 पर सुनिएगा दोपहर समाचार के तहत हिंदी में समाचार। कल दोपहर 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत लामालोप संग सरिंग और साथियों से बोध भक्ति भजन। कल दोपहर 3:00 आप आनंद ले सकेंगे भूपेन हजारिका की आवाज में चंद असमिया आधुनिक नगमे।

कलोपर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात। कलोपर 3:33 पर सुनेगा महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत बिल्लू फमसी सोहम चक्रवर्ती आकृति कक्कर और मोनाली की आवाजों में, कश्मीर के कली फमसी मोहम्मद रफी की आवाज में, वाकफ सेठ फमसी कविता सेठ की आवाज में और ऊंचाई फमसी अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में चंद नगमे। कल दोपहर 3:50 पर आप आनंद ले सकेंगे कार्यक्रम गीत मंजरी के तहत बवाल फिल्म से लक्ष्य कपूर आकाश दीप सेन गुप्ता और स्वर्णा तिवारी की आवाजों में, श्रीकांत फिल्म से जुवेन नोटियाल और तुलसी कुमार के सुरों में, हसीन दिलरुबा फिल्म से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में, फाइटर फिल्म से भी पराग विशाल दलानी और शेखर रबजानी की आवाजों में, योद्धा फिल्म से विशाल मिश्रा की आवाज में, मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से जुवेन नोटियाल और साथियों के सुरों में, रोसलिन फिल्म से रितो रिवा की आवाज में, लापता लेडीज फिल्म से अरिजीत सिंह के स्वर में, दो पति फिल्म से परंपरा टंडन के स्वर में और अमर प्रेम की प्रेम कहानी फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में चंद नगमे। कल संध्या 4:30 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग में आप सुन सकेंगे निषाद खान से सितार वादन। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर, 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 5 सुनिएगा मोनपा कार्यक्रम में रोजाना की तरह नमदर लेरिम। 5:30 पर सुनिएगा दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में श्री दुप्तन ताशी से। कल शाम 5:35 पर सुनिएगा दंगपोक समा में वांगचिन और वांगचिन दोर्जी गुम्बो और तुप्तन वांगचू और जिगमे ढुंडु फौर साथियों से मोनपा लोकगीत। कल शाम 6 आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आप सुन सकेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लाइव स्टॉक इंश्योरेंस के सीनियर वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर बामिंग राजा से एक साक्षात्कार। कल शाम 7:30 पर सुनेगा लेरिम सेरा। 7:37 पर सुनेगा कार्यक्रम जरोखा। कल शाम 6:44 पर सुनेगा शेदन लेरिम में तवांग मठ के लामा दांगा और साथियों से बौद्ध भक्ति गीत। कल शाम 7 सुनेगा हिंदी में समाचार तथा शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। कल शाम 7:23 पर सुनेगा कार्यक्रम आज की कविता। कल शाम 7:11 पर सुनेगा साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आप आनंद ले सकेंगे फिल्म कर से चंद नगमे। कल शाम 7:25 पर सुनेगा कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित। कल शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम 7:55 पर सुनेगा एक देशभक्ति गीत सोहेल सेन की आवाज में फिल्म खेले हम जी जान से। कल रात्रि 8 का समय रहेगा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमों का। कल रात्रि 8:30 पर सुनेगा स्पोर्ट्स स्कैन। कल रात्रि 8:45 पर सुनेगा समाचार संध्या। तत्पश्चात ठीक रात्रि 9 आप सुन सकेंगे न्यूज एट 9। कल रात्रि 9:15 पर अगले दिन प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। कल रात्रि 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये तो थी आज

के शेष कार्यक्रम तथा कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरोखा समाप्त होता है। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता हमारा अगला कार्यक्रम सुनेगा मौनपा में, कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: भारत का पहला एफटीए है, यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगी। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों का संयुक्त उत्पादन और विकास करती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राष्ट्रपति पहमला की भावना की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। नई दिल्ली में आज म्यूनिक सम्मेलन में श्रीमती सीतारामन ने इसे सभी समझौतों की जननी बताया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के पर्यटन आयुक्त से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग के फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। शीर्ष न्यायालय ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए। पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। 2026 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हैगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया गया। तीनों वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स के जुड़ी खोजों के लिए यह सम्मान मिला है। इस तकनीक से प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को सक्रिय या बंद किया जा सकता है। इससे वैज्ञानिकों को याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। स्टॉकहोम में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने आज इसकी घोषणा की। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है। नई दिल्ली में आज एडवांटेज भारत एक उभरता वैश्विक रसायन केंद्र विषय पर इंडिया केम के 14वें संस्करण में सुश्री पटेल ने वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आ रही बाधाओं के बीच पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता का उल्लेख किया। मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और लक्षद्वीप में कल तक बारिश की संभावना है। वहीं आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: पशुपालक स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध उत्पादन विषय पर डॉक्टर जयदेव सिंह SMS एनिमल साइंस केवी के तवांग से हुई एक भेंट वार्ता, उनसे भेंट करता है दोर्जी रमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण सुन रहे आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, दूध हमारे दैनिक आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्ता दूध तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हर चरण में स्वच्छता और वैज्ञानिक तरीकों का ध्यान रखा जाए। तो हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सुरक्षित एवं स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए वैज्ञानिक उपायों पर, और हमारे साथ आज इस विषय पर अपने विशेषज्ञ विचार साझा करने के लिए उपस्थित है कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट पशु विज्ञान डॉक्टर जयदीप सिंह। डॉक्टर साहब, एक बार फिर हमारे आकाशवाणी तवांग के कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: आइए श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और विशेषज्ञ से बातचीत के माध्यम से जानते हैं कि पशुपालक स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध उत्पादन के लिए किन सरल वैज्ञानिक उपायों को अपना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में हम सबसे पहले जानेंगे आपसे।
2: जी, जैसा कि आपने बताया क्लीन मिल्क के बारे में, तो क्लीन मिल्क से मतलब यहाँ पे हमारा ये होना चाहिए कि जो देखने में भी क्लीन न हो, अंदर से भी क्लीन हो। जैसे दूध में कुछ विजिबल होते हैं, कुछ इनविजिबल डर्ट होते हैं, तो दोनों से फ्री होना चाहिए, उसी को हम आप क्लीन मिल्क कह सकते हैं।
1: अच्छा।
2: क्योंकि जब भी हम जैसे कि गाय या याक से हम दूध लेके आए, तो सबसे पहले उसको विजिबल डर्ट्स को निकालने के लिए, जैसे दूध को निकालते समय बहुत सारे जैसे हेयर्स वगैरह या चारे दाने का अंश जो है उसमें चला जाता है, तो उसको फर्स्ट इंस्टेंस में ले आके फिल्टर करना चाहिए। हमारे किसी भी ग्रामीण या शहरी जीवन में जब भी हम दूध लेते हैं, दूध वाले से या फिर डेयरी से या कहीं से भी, तो उसको घर में लाके सबसे पहले उसको फिल्टर करना जरूरी होता है। तो जो विजिबल डस्ट होती है वो फिल्टर करने से, कभी कभी आप फिल्टर करेंगे तो खुद ही दिख जाएगा आपको उस पर कि हाँ इसमें चारा दाने का अंश है या बाल है या जो भी बाहरी चीजें वो दिख जाती है, तो वो चीज हटा दीजिए। दूसरा चीज ये है कि जो इनविजिबल डर्ट भी होती है, जैसे वो मिल्क है, तो वो पैथोजन फ्री होना चाहिए, ताकि जो भी पशु है, स्वस्थ पशु है कि नहीं, वहां से दूध आया है कि नहीं, पूरी तरह सैनिटाइज था कि नहीं वहां पे, और जो ले आ रहा है या जो दूध दे रहा है, दोनों को भी स्वच्छ होना जरूरी है।
1: जी,
2: उसके कपड़े, उसके नेल्स, उसके हाथ, उसके पूरे मतलब अच्छी तरह से साफ होने चाहिए, तभी जो है वो क्लीन मिल्क की श्रेणी में आता है। तो उसका तीन तरीके से होता है क्लीन मिल्क होना। एक तो पशु की तरफ से, पशु के बाड़े की तरफ से वहां से कंटेमिनेशन होता है। दूसरा, ग्वाले जो दूध निकालता है या जो ले आता है, मिल्कमैन जो होता है, उस पार्ट से बचाना है। और तीसरा, घर में सैनिटेशन करना है।
1: अच्छा।
2: घर में फिल्टर किया आपने और फिर उसके बाद उबाला, बॉयल किया आपने, जैसे पाश्चराइजेशन, मतलब उबालने से आप पाश्चराइज कर दिए, मतलब
1: जो है कहते हैं दूध को हमेशा उबाल कर पीने चाहिए, तो उबालना क्यों जरूरी है फिर?
2: उबालने का मेन तात्पर्य है जितने भी उसमें अनवांटेड बैक्टीरिया या पैथोजेंस हैं, स्पेशली जो पैथोजेंस इसलिए कह रहे हैं जो रोग के कारक होते हैं। देखिए, बैक्टीरिया दूध में होना बहुत ही स्वाभाविक चीज है, क्योंकि दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं दूध में या माइक्रोब्स होते हैं, एक बेनिफिशियल होते हैं, दूसरा नॉन बेनिफिशियल, एक जो अलाभकारी होता है, दूसरा हानिकारक होता है।
1: अच्छा।
2: तो जो हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस हैं उसको हम लोग पैथोजेनिक कहते हैं, जहां से कि हमको बीमारी लगने का चांस बनता है। तो जब हम उस पैथोजेनिक बैक्टीरिया को दूध में समाप्त कर देते हैं या निकाल देते हैं, तभी वो क्लीन मिल्क होता है। तो दो तरीके हैं उसको साफ करने के, एक तो कूलिंग से, ज्यादा कूलिंग कर दीजिए तो इनएक्टिवेट हो जाएगा, उसकी प्रक्रियाएं जो है शून्य हो जाएंगी। और दूसरा है ज्यादा टेम्परेचर या ज्यादा हीट कर दीजिए, एवं 100+ कर दीजिए, 2 से 3 मिनट के लिए अब उबाल दीजिए नॉर्मली, तो जिसमें भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, तो वो जो है हाइजीनिक मिल्क फिर हो जाता है, क्लीन मिल्क हो जाता है। इसके लिए एक पाश्चराइजेशन टेक्निक होती है, वो तो अलग हो गई, लेकिन हमारे किसान भाई या हमारे पशुपालक भाई जो भी हैं, जैसे हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोगों को भी चाहिए कि जब भी दूध रॉ मिल्क आए उसको पहले तो फिल्टर कर लें, उसके बाद उसको करीब 100+ बॉइलिंग पॉइंट पे ले आके कम से कम 2 से 5 मिनट, 3 से 5 मिनट जो है उसको बॉयल करके उसके बाद ही कंज्यूम करें।
1: विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि दूध पीने से बहुत ही ज्यादा हमारे स्वास्थ्य से जुड़े फायदे होते हैं, लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फायदे क्या क्या होते हैं।
2: दूध एक संपूर्ण आहार के रूप में लोग

0: लेते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ये सारी चीजें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। एक तरह से ये पूरक आहार है। हम कहते हैं ये दूध जो है ना, ये बच्चा जन्मने से लेके मरने तक का ये आपका आहार है, क्योंकि बच्चे को भी दूध की आवश्यकता है। न्यूबॉर्न बेबी है, उसको तो दूध, पहली फीडिंग तो दूध से ही, मदर के दूध से होती है। दूध का एक्चुअली वो कोलेस्ट्रम होता है। सेम चीज एनिमल्स में भी है मैडम। का गाय है या जो याक का बच्चा जो पैदा हुआ, उसको कोलेस्ट्रम फीडिंग 2 से 3 दिन बहुत आवश्यक है। कोलेस्ट्रम फीडिंग से क्या होता है कि उसमें इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग हो जाती है, और जो भी 9 महीने का गर्भ था, गर्भ में जब पल रहा था बच्चा, तो उसका इंटेस्टाइनल जो भी वेस्ट था वो जब लैक्जेटिव होता है कोलेस्ट्रम, जैसे बच्चा पैदा हुआ गाय का या याक का, उसको कोलेस्ट्रम मतलब माँ का दूध मिला, तो वो लैक्जेटिव होता है, जितना भी गंदगी था 9 महीने का वो पूरा साफ कर देता है। और जब इंटेस्टाइन आपका साफ हो गया अच्छी तरह से, वेस्ट जो भी है उसका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, साफ स्वच्छ हो गया आपका इंटेस्टाइन, तो उसमें एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन की प्रक्रिया भी अच्छी होती है। तो आपका एक तरह से स्वस्थ, आपका बॉडी भी स्वस्थ होता है, तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका डेवलप होता है। तो इसलिए दूध अच्छा, ये तो बच्चे की बात है। एडल्ट्स में क्या है कि एक पूरा का आहार के रूप में लेते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं दाल चावल रोटी सब्जी या कुछ भी खाना अपना जो भी है, उसके बाद भी कुछ न कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम एक गिलास अगर दूध ले लें खाने के बाद, तो वो चीजें वहां से पूरित हो जाती हैं। तो एक कंप्लीट आहार को पूरा कर देता है, इसलिए कम्प्लीमेंट्री फूड या सप्लीमेंट्री फूड के रूप में भी इसको लेते हैं।
1: एक स्वच्छ दूध उत्पादन या फिर प्राप्त करने के लिए, जैसे कि पशु को टीकाकरण करवाना या फिर डीवॉर्मिंग करवाना कितना जरूरी है?
0: जी, डीवॉर्मिंग तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर पशु स्वस्थ है तभी मिल्क स्वस्थ मिल सकता है। तो एक स्वच्छ मिल्क या स्वच्छ प्रोडक्शन मिल्क का लेने के लिए जानवर को उससे संबंधित सभी एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा। पहले तो पशु स्वस्थ करना है, पशु को अच्छा आहार दीजिए, अच्छे से उसका रहने का जगह को सैनिटाइज करके रखिए, उसको कोई तरह का रोग व्याधि न हो उसका भी ध्यान देना है, उसके बाद ही उससे स्वच्छ मिल्क का हम आप प्राप्त कर सकते हैं। और अदरवाइज तो कंटामिनेशन कई तरह, कई पार्ट में हो सकता है। एक तो एनिमल की तरफ से भी हो सकता है, दूसरा आपका जो मिल्कर है उसके पार्ट से हो सकता है, अगर वो सैनिटाइज नहीं है, वो क्लीन नहीं है, तो वहां से भी इन्फेक्शन के चांसेस बनते हैं। तीसरा, जो हम बर्तन यूज करते हैं यूटेंसिल्स, उससे भी कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो इसलिए तीनों पार्ट में हम लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा, थोड़ा साफ सुथरा सफाई का ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके हम क्लीन मिल्क प्रोडक्शन प्राप्त कर सकेंगे।
1: जैसे मान लीजिए एक अस्वस्थ पशु झुंड में है, तो उनसे जो प्राप्त किए हुए दूध है वो कितना सुरक्षित है, या फिर उसका ध्यान जो है पीने से पहले किस तरह से रखा जाना चाहिए?
0: जी, जैसा कि बताया पहले मैडम, कि जो भी अस्वस्थ पशु है उसको आइसोलेशन में रखना बहुत जरूरी है, और उसके जितने भी प्रोडक्ट है, चाहे मिल्क हो, चाहे मीट हो, कुछ भी, कैसा भी प्रोडक्ट आप उसका यूज करो, उसको जो है जब तक आप श्योर न हो जाओ कि हाँ ये अभी डिजीज फ्री है ये मिल्क, या पैथोजन फ्री है ये मिल्क, अगर आपको कुछ नहीं जैसे कि पता है, तो उसको आप स्टरलाइज कर दीजिए, मिल्क को अच्छे से उसको उबाल दीजिए, करीब हाफ एन आवर अच्छे से उबलने दीजिए, उसके बाद जब जितने भी उसके पैथोजेनिक बैक्टीरिया तो मरेंगे ही, साथ में और भी जो भी उसमें एसोसिएटेड बैक्टीरिया होंगे वो सब भी समाप्त हो जाते हैं, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और एडेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने उसको कम्प्लीटली दूध को स्टराइल कर दिया, उसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, तो वो कंज्यूमेबल है, वो आप कंज्यूम कर सकते हैं।
1: जब हम एक पशु से दूध प्राप्त करते हैं तो उस पशु का स्वास्थ्य का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, तो उसके साथ साथ जो थनेला होता है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए जो मिलकर होते हैं, जो पशु पालक है, उसके जो दूध निकालने से पहले हाथों का साफ होना कितना जरूरी है, क्या नाखून वगैरह कटे हुए होने चाहिए?
0: बहुत ही आवश्यक है मैडम। दूध को निकालने से पहले जो मिल्क मैन है उसमें नाखून की सफाई होनी चाहिए, उसको खुद से सेवलॉन से या डिटॉल से हाथ को डिसइंफेक्ट करना चाहिए, मिल्किंग के समय भी और मिल्किंग के बाद भी अडर को भी अच्छे से साफ करना है, अपने आप को साफ करना है, तभी वहां से जो है आप क्लीन मिल निकाल पाते हैं।
1: जी जी, कई बार लोग कहते हैं कि जो याक और गाय दोनों में से जो दूध प्राप्त होते हैं, तो कहते हैं कि याक से जो प्राप्त होने वाले दूध है वो ज्यादा बेहतर है, तो ये कहाँ तक सही है डॉक्टर?
0: ये सही, बिल्कुल इसलिए सही है कि याक का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है

0: याक मिल्क का वो रिलेटिवली हाई होता है। तो याक में जो प्रोटीन कंटेंट होगा उसकी क्वालिटी होगी, या फैट कंटेंट होगा उसकी क्वालिटी होगी, या विटामिन मिनरल्स का जो भी कंपोजिशन होगा वो नेचुरली गाय से थोड़ा सा बेटर होता है, और क्योंकि परसेंटेज भी ज्यादा होता है, अगर 10-12% के आसपास याक के मिल्क में फैट पाया जाता है, और यही पोर्शन अगर आप गाय में देखें तो 6-7% पाया जाता है। तो क्वालिटी आपके मिल्क फैट चूंकि ज्यादा हो गया उसमें, इसलिए उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई। इसलिए आप छुरपी उपी बनाते हो तो उसकी क्वालिटी अलग मिलती है, जैसे ये याक मिल्क की उसमें फैट कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए उसका अच्छा न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी होती है, गाय से अच्छी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है।
1: आपने कई बार देखे होंगे यहाँ के जो पशु पालक हैं वो किस तरह से जो तरीके अपने पारंपरिक तरीके को अपनाते हैं, तो उस समय जो है दूध जो है दूहते समय डेयरी किसान अक्सर कौन कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं, जो दूध की स्वच्छता और गुणवत्ता सुधारने के लिए वे कौन से सरल बदलाव अपना सकते हैं।
0: जी मैम, सबसे पहले जो मिल्कमैन है या मिल्कर है जो गाय या याक से दूध निकाल रहा है उसका मेथड ऑफ मिल्किंग अच्छी होनी चाहिए।
1: हाँ जी,
0: जैसे कोई कोई पशुपालक है वो मिल्क निकालने में गलत तरीके का भी प्रयोग कर सकता है, जैसे अंगूठा दबा दबा के निकालता है तो उसी से थनैला रोग को बढ़ावा मिलता है, तो उसको चाहिए कि फुल स्ट्रिपिंग या फुल हैंड वाले मेथड से उसको निकाले दूध को, ताकि अगर फुल हैंड मेथड से निकालेगा तो उसको थनैला रोग होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे।
1: जी।
0: और पशु आपका स्वस्थ रहना चाहिए, अटेंडेंट स्वस्थ रहना चाहिए, पशु पालक है पशु को जो केयर टेकर है उसका भी साफ स्वच्छ रहना उतना ही आवश्यक है।
1: जी जी। और डॉक्टर साहब, यदि कोई पशु पालक को दूध में खून मवाद या फिर असामान्य रंग गंदा या फिर ज्यादा कुछ गारापन दिखे तो उन्हें क्या करना चाहिए?
0: उसको तुरंत जो है वेटरिनेरियन से सलाह लेनी चाहिए, उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और किस कारण से इस तरह से हो रहा है उसका कारण का पहले पता करके उसके बाद ही उसके निवारण के बारे में जाना चाहिए। और किसान भाइयों की एक और, जैसे थनैला लोग है तो स्मोकिंग वगैरह भी उसको दिखाते हैं, जैसे कि जो थनैला जहाँ पे आयन जो है उसमें अजवाइन वगैरह का धुआं देते हैं, तो वो काम इंस्टेंस में प्राइमरी फेसिस में उसको आप कर सकते हो,
1: उसमें से फायदे हो सकते हैं।
0: हाँ, उसमें फायदा होगा, उसका जो भी इफेक्ट होता है ना थनैला रोग से कंट्रोल करने में काम आता है।
1: कार्यक्रम के अंत में आप जो है तवांग के जो पशु पालक है उनके लिए स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के संबंध में क्या महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे?
0: इसके हमारे जितने भी पशुपालक भाई हैं, जितने भी केयर टेकर हैं पशु के, उनको चाहिए कि जो भी उनके पास गाय, एक ही गाय है चाहे दो गाय है चाहे तीन, जो मिल्किंग गाय है काऊ से मिल्किंग हर्ड है, चाहे काऊ का हो चाहे याक का हो, उससे साफ और सुथरी वातावरण में रखने की प्रयास करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, उसको दूषित आहार नहीं देना चाहिए, दूषित पानी नहीं देने चाहिए, खान पान की व्यवस्था जो हो वो भी स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ खाद्य पदार्थ होगा, स्वच्छ चारा होगा, तभी जो है उसका स्वच्छ मिल्क प्रोडक्शन वहां से निकलेगा, क्योंकि वो तो एज ए मशीन की तरह है, आप चारा हम देते हैं मिल्क निकलता है वहां से, तो जो चारा दाना हम लोग दे रहे हैं उसका भी अच्छे से किसी भी पैथोजन से फ्री होना है, किसी तरह का प्रदूषण उसमें नहीं होना है, वो अच्छा साफ सुथरा उसको खाना दाना देना है। और उसके बाद फिर भी कभी कभी बहुत सारी मैनेजमेंट करने के बाद भी कभी कभी कुछ बीमारियां आ जाती हैं, तो उस बीमारी को बचाने के लिए सबसे पहले पशु चिकित्सक की सलाह लीजिए बुला के, उसको आइडेंटिफाई करिए क्या बीमारी है, कैसे बीमारी क्या थी, कहां से इसको कैसे लग गया, तो उस सोर्स को भी मिटाना जरूरी है। और बीमारी का जब आप डायग्नोसिस मतलब पहचान हो गया, उसी के अकॉर्डिंगली आपको दवा देना है। पशुपालक भाइयों से ये मेरा आग्रह है कि अपने खुद से जो है दवा को देने से परहेज करें, क्योंकि पशु चिकित्सक जो आपको सलाह देगा वो नेचुरली स्वाभाविक रूप से आपसे बेहतर ही होगा, तो पशु चिकित्सक की सलाह लें, पशु जो सहायक हैं उनकी सलाह आप ले सकते हैं, ये सब करके हुए अपना साफ वातावरण में रखते हुए एक स्वच्छ दूध का उत्पादन हम कर सकते हैं। उत्पादन के बाद उसका यूज भी जो है जिसमें हम यूज कर रहे हैं उसको भी साथ में स्वस्थ रखना जरूरी, जितना भी बर्तन हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर समय से उसको साफ सुथरा करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तभी जो है, अगर हम मान लीजिए स्वच्छ दूध उत्पादन तो कर रहे हैं फिर लेकिन जिस बर्तन में रख रहे हैं वही गंदा है,
1: तो
0: कोई फायदा नहीं है। इसलिए दोनों पार्ट में आपको ध्यान देना है और प्लस अपने आप में को भी ध्यान देना है कि आप जब दूध निकालने जा रहे हैं तो आपका पूरी तरह से आपका हाथ आपका मुंह, ऐसे कोई कोई होता है कि खाई नहीं खा

0: रखते हैं, सिगरेट पीते हैं, उस समय भी उनका प्रैक्टिस चालू रहता है। इस तरह के प्रयोग से बचना चाहिए। तो इसी से इन्फेक्शन होता है, इसी से मतलब कंटामिनेटेड होता है मिल्क। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए एक स्वच्छ मिल्क उत्पादन करके अपने स्वच्छ परिवार के मेंबर भी है तो भी तो उसको भी तो स्वच्छ दूध ही चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि स्वच्छ दूध रहेगा तभी स्वच्छ आदमी भी रहेगा। पता चला हम प्रदूषित दूध पी लिए तो फिर बीमारी का कारण भी बन जाता है। इसलिए अच्छा स्वच्छ उत्पादन करिए, स्वच्छ प्रोडक्शन होगा तभी स्वच्छ उसका कंजम्पशन भी होगा।
1: जी जी जी।
0: और रोगों से हम सभी बचे रहेंगे, जानवर भी बचा रहेगा और कंज्यूमर भी बचा।
1: कोई पशु अस्वस्थ हो, उसके इलाज चल रहे होंगे, तो उस समय जो है उनसे दूध प्राप्त करना जो है सही है या नहीं, या उसकी जो ध्यान है किस तरह से रखनी चाहिए?
0: सबसे पहले अगर उसमें देखना है कि किस बीमारी से ग्रसित वो जानवर था जहाँ से दूध आया हुआ है। अगर नॉर्मल बीमारी से है तब तो हम ये कहेंगे कि उस दूध को, जो दूध हुआ है उसको तो अलग रखिए, अलग रख के उसका अलग ट्रीटमेंट भी दीजिए। जैसे कि उसको नॉर्मली हम टेम्परेचर होता है उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर पे उसको 15 से 20 मिनट कम से कम उसको बॉयल कर दीजिए। बॉयल करने से क्या होता है, जितने भी बेनिफिशियल नॉन बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं सब जो है डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, तो वो फर्दर कंजम्पशन के लिए सुटेबल हो सकता है। बट कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि जो है जैसे कि आपका थनेला हो गया या ये डिसेंट्री हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, इन सब से अगर ग्रसित है तो वो दूध को डिस्कार्ड कर देना ही अच्छा रहेगा।
1: जी जी जी।
0: हाँ, उसको कंजप्शन में नहीं लेना है।
1: अच्छा।
0: उसका मिल्किंग करके डिस्कार्ड कर दें। लेकिन कुछ सर्टेन बीमारियां ऐसी जिससे कि बहुत ज्यादा उसका प्रोड्यूस प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको हाई हीटिंग में ले जाके उसको अच्छे से बॉयल कर स्टेलाइज करके दूध को आप कंजप्शन में ले सकते हैं, या फिर फर्दर उसको आप मिल्क प्रोडक्ट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका कर्ड बनवाने में या ये फ्लेवर्ड मिल्क बनाने में, बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट है उसमें आप उसको यूज में ले सकते हैं।
1: जी, तो आज आपने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में अपने समय निकाल कर आए और हमारे श्रोताओं को कई सारे महत्वपूर्ण जानकारियां दी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: बहुत बहुत आभार आप सभी का, आपकी पूरी टीम का।
1: जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एनिमल साइंस डॉक्टर जयदेव सिंह से पशुपालक स्वच्छ एवं सुरक्षित दूध उत्पादन विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थे दोर्जी ड्रामा। श्रोता के साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण समाप्त हुआ।

मेरी मिप की मीटर बैंड पर आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, समय शाम के 7:30 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फौजी वायु के लिए फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का पहला नगमा ये सुनते हैं कट्टी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने तथा संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है उदित नारायण और चित्रा के युगल आवाजों में फिल्म कोई मिल गया से। गीत इब्राहिम अशके है तथा संगीत राजेश रोशन का।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकी, मोबिलिटी सिस्टम और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रोत्साहन और सहयोग से जुड़े कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच एक आशय पर पत्र भी हस्ताक्षर किए गए। वही विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस के बीच नवाचार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गे प्लामला के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री ने भारत और स्विट्जरलैंड के संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गे प्लामला की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा है कि भारत ने पिछले वर्ष अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के सदस्य देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने ऐप आधारित और डिजिटल

0: परिवहन मोबिलिटी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाली महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि ऐप आधारित परिवहन सेवाएं महिलाओं के दैनिक आवागमन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। आयोग ने कहा है कि ये दिशा निर्देश महिलाओं के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने के उसके उद्देश्य के अनुरूप तैयार किए गए हैं। वैधानिक निकाय ने यह भी कहा है कि दिशा निर्देश तैयार करते समय 2013 की जयस वर्मा समिति की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा जाए। राष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर दिशा निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया है। राज्यसभा सांसद ताय तागाक ने लोंगडिंग जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास स्थित भारत के प्रथम गांव वाका में आयोजित 9वें राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद ने सामुदायिक कल्याण और जमीन स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान के लिए वाका के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा दीदी को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि यह पहल जमीनी स्तर पर कल्याण व्यवस्था को मजबूत करने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा समुदाय की समर्पित सेवाओं को पहचान देने के प्रतिभा को प्रदर्शित करेगा। कार्यक्रम में पांचों वाका विधायक खोंचुंग आमदाम, लोंगडिंग उपायुक्त कुणाल यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पर्यटन राज्य मंत्री पीडी सोना ने तवांग में आयोजित होने वाली आगामी 14वें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के प्रतिनिधियों तथा राज्य पर्यटन विभाग और तवांग एवं वेस्ट कामेंग जिले के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए समन्वय को मजबूत करने और आवश्यक तैयारियों की समीक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें लॉजिस्टिक, आवास, परिवहन प्रोटोकॉल, आतिथ्य और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं शामिल हैं। नामसाई एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र के विधायक चाओ जिग्नू नामचुम ने स्थानीय आदिवासी परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आज खोंसा के नेहरू स्टेडियम में आयोजित तीसरे केंद्रीय रोंगहुआन कोहुआ महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी का अपनी जड़ों से बढ़ता हुआ जुड़ाव कम होना चिंता का विषय है। उन्होंने युवाओं से अपने बुजुर्गों से पारंपरिक गीत, नृत्य और रीति रिवाज सीखने और उन्हें सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने का आग्रह किया। श्री नामचुम ने तिराप की जनजातियों से अन्य समुदाय से प्रेरणा लेते हुए अपने पारंपरिक डिजाइन और वस्त्रों के लिए GI टैगिंग की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा है कि नामसाई में हाल ही में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो स्थापित किया गया है। उन्होंने नोक्ते और तुत्सा समुदायों के युवाओं से इस सुविधा का निःशुल्क उपयोग करने और पारंपरिक लोकगीतों तथा मौखिक इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने स्थानीय बोलियों के लिए शिक्षा क्षेत्र में रोमन लिपि अपनाने का भी सुझाव दिया ताकि स्थानीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण तथा प्रोत्साहन में मदद मिल सके। और लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो स्थित सेंट क्लारेट कॉलेज में जीरो बर्ड एंड बटरफ्लाई फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही क्षेत्र में 72वें वन्यजीव सप्ताह समारोह की भी शुरुआत हुई। उद्घाटन सत्र के बाद यह महोत्सव 3 दिनों के लिए ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पांगे क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान पक्षियों और तितलियों के अध्ययन एवं निगरानी के साथ साथ उनके संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां भी की जाएंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। इंडिया एंड स्विट्जरलैंड टुडे इंक्ड सेवरल एग्रीमेंट्स इन द फील्ड ऑफ प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन ऑन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज, मोबिलिटी सिस्टम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। A letter of intent was also signed between the Department of Science and Technology and the Swiss National Science Foundation. An implementation arrangement for cooperation in innovation technology transfers the entrepreneurship between the Department of Science and Technology and the Zurich University of Applied Sciences was also signed. These agreements were signed after the bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi. The National Commission of Women has issued guidelines to states and union territories to ensure safety of women passengers who are using app-based and digital transport mobility services. The NCW has underlined that at a time when app-based transport services have become an integral part of women commuting daily,

श्रोताओं, अभी आपने सुना कुंजन सक्सेना फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में एक देशभक्ति गीत। इस गीत के गीतकार थे कौसर मुनीर तथा संगीतकार थे अमित त्रिवेदी। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, समय रात्रि के ठीक 8 बजे हैं। बीजे श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला फरमाश आइए सुनते हैं। लाओ पेगंग से आफे पेमा डशी कर्मा चुटन लम रेमा श्रीयंग चिन जम्बे चुटन और नाकू। आप सबके फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं। आई मिलन की रात फिल्म से अनुराधा पोटवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। इस गीत के गीतकार है समीर तथा संगीतकार है आनंद मिलंद।

गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमो से आप है तंजन सिरिंग तोपतन सिरिंग लोफसंग तोपतन और कुंजल संगे की आप सबके फरमाइश पर यान लेते कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म डिस्को डांसर से बब्बी लहरी की आवाज में। इस गीत को लिखा है अनजान ने तथा संगीत दिया है बब्बी लहरी ने।

उर्गिलिंग विकासनगर तवांग से संगीत प्रेमी लवसंग तिंदा के फरमाइश पर आई आनंद लेते कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म यकीन से मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, इस समय आप आनंद ले रहे हैं। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद पुराने हिंदी फिल्मी नगमे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम का अगला फरमाइश आइए सुनते हैं। दुर्गा सिलू से आप है चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सीआर कुलकर्णी। आप सबके फरमाइश पर आनंद लेते हैं दो बदन फिल्म से आशा भोसले की आवाज में। इस गीत के गीतकार है शकील बदयानी तथा संगीतकार है रवि।

दिलीप मालाकर, सुनीता मालाकर, योगेश मालाकर, मुस्कान मालाकर और जितेंद्र मालाकर। आप सबके फरमाइश पर कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं ताराना फिल्म से शैलेंद्र सिंह की आवाज में। इस गीत को लिखा है तिलक राज थापर ने तथा संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।

श्रोताओं भी अपना ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमा

शुभ आधारित हमारा या रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं समाप्त होता है। आइए श्रोताओं आनंद लेते हैं लव इन टोक्यो फिल्म से गीत लता मंगेशकर के आवाज में। गीत हसरत जयपुरी के तथा संगीत शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म लव इन टोक्यो से लता मंगेशकर की आवाज में एक गीत। आपकी सेवा में यह आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोता, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अब से कुछ ही पलों में, यानी रात्रि 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स स्कैन। रात्रि 8:45 पर सुनिएगा समाचार संध्या तथा ठीक रात्रि 9 बजे आप सुन सकेंगे न्यूज़ @9। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी हर अहम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कार्लोस अल्काराज दूसरी बार जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में मुनार को हराया। नोवाक जोकोविच और एलेक्स डिमिनोर ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में प्रवेश किया। इगा स्वायतेक ने राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। पुर्तगाल ने यूईएफए फुटबॉल नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल लखनऊ में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं टेनिस से, जहां आज कई खिलाड़ी खेलते हुए नजर आए, जिसमें कार्लोस अल्काराज थे, नोवाक जोकोविच थे। वर्ल्ड नंबर 3 कार्लोस अल्काराज ने जापान

0: ओपन टेनिस के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में उन्होंने हमवतन खिलाड़ी जाउमे मुनार को 5-7, 6-3, 6-1 से मात दी। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है, कोई भी टूर्नामेंट हो, कार्लोस अल्कराज सबसे प्रोमिनेंट खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में यूएस ओपन हुआ था, उसमें अल्कराज को क्वार्टर फाइनल में हार मिली थी। आज कैसा प्रदर्शन रहा है कार्लोस अल्कराज का?
1: प्रशांत, आज का प्रदर्शन कार्लोस अल्कराज का काफी शानदार रहा है। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, पिछले कुछ समय में अपने आप को साबित किया है। यूएस

0: शानदार वापसी करी और 6-5 से स्कोर अपनी ओर कर लिया और पहला सेट भी जीत लिया। इसके बाद अल्कराज ने दूसरे सेट में वापसी की, उन्होंने ब्रेक करके 2-1 की बढ़त बनाई, फिर अगली सर्विस होल्ड करके स्कोर 3-1 किया और एक और ब्रेक के साथ 4-2 की बढ़त हासिल की। फिर उन्होंने एक और ब्रेक के साथ सेट 6-3 से अपने नाम किया। तीसरे सेट में उन्होंने लगातार अपनी सर्विस होल्ड करते हुए और हमवतन खिलाड़ी की सर्विस ब्रेक की और आगे बढ़े। तीसरे सेट में 4-0 के स्कोर पर वे 2 ब्रेक से आगे थे। हालांकि मुनार अपनी सर्विस बचा ले गए, लेकिन अल्कराज ने अपनी सर्विस पर 6-1 से मैच जीत लिया और 7 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन का मुकाबला अब फाइनल में जिरी लहका से होगा।
1: जी, बेहतरीन प्रदर्शन किया कार्लोस अल्कराज ने और दूसरी बार जापान ओपन टेनिस के फाइनल में पहुंचे। उधर चाइना ओपन टेनिस का भी मुकाबला खेला जा रहा है। एलेक्स डी मिनोर ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में वॉकओवर मिलने के कारण उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। वॉकओवर मिलने से पहले एलेक्स हुबर्ट हुरकराज से 6-4 3-2 से आगे चल रहे थे। उधर ईगा स्वायतेक ने रोमांचक महिला सिंगल्स मुकाबले में डोना विकिक को हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। सुनते हैं ये खास रिपोर्ट।
2: छह बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ईगा स्वियातेक ने आज चाइना ओपन के राउंड ऑफ 32 में 30वीं वरीयता प्राप्त डोना विकिक को हराया। उन्होंने 1 सेट और 2 ब्रेक से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की। स्वियातेक पहला सेट 4-6 से हार गई थी और दूसरे सेट में 2-5 से पीछे चल रही थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए सिया की खिलाड़ी की सर्विस 2 बार तोड़कर स्कोर 5-5 कर दिया। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी सर्विस बचाए रखी और दूसरा सेट ट्राई ब्रेकर में चला गया। स्वियातेक ने दूसरे सेट का ट्राई ब्रेकर 7-0 से जीता। दोनों खिलाड़ियों ने तीसरे सेट की शुरुआत एक दूसरे की सर्विस तोड़कर की, लेकिन स्वियातेक ने 3-2 पर ब्रेक हासिल किया। उन्होंने अपनी सर्विस बरकरार रखी और विकिक की सर्विस तोड़ी और फिर निर्णायक सेट में 6-2 से जीत हासिल की। अब स्वियातेक का सामना इवा जोविक से होगा। जोविक ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में कामिला रखी मोवा को 6-1-7-5 से हराया था। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स कैन।
1: विशेष बेहतरीन प्रदर्शन रहा है एलेक्स का। एलेक्स डी मिनोर ने वॉकओवर मिलने के कारण पुरुष सिंगल्स के फाइनल में तो प्रवेश कर लिया, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल की क्या तस्वीर है
0: प्रशांत? दूसरे सेमीफाइनल में दिग्गज नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को 7-5-5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब उनका मुकाबला कल एलेक्स डी मिनोर से होगा।
1: लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है जोकोविच का। यूएस ओपन में अभी बाहर हो गए थे जल्दी ही टूर्नामेंट से, लेकिन विशेष ये जो खिलाड़ी हैं टेनिस इतिहास के बेहतरीन खिलाड़ियों में इनका नाम शुमार है। चाहे मेदवेदेव की बात कर ले या जोकोविच ने, जो दोनों ने सेमीफाइनल में किस तरह का प्रदर्शन किया है और हाल के दिनों में कैसा रहा है इन खिलाड़ियों का हालिया प्रदर्शन।
0: प्रशांत, दोनों ही खिलाड़ी बहुत शानदार हैं और उनका प्रदर्शन भी आज काफी शानदार रहा। हालांकि जोकोविच अपने अनुभव के दम पर मुकाबले को एक तरफा बनाकर ले गए। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो जोकोविच ने अपने करियर में 24 ग्रैंड स्लैम, जो कि सबसे ज्यादा है, और 101 ATP सिंगल्स टाइटल जीते हैं, जो दर्शाता है कि किस दर्जे के खिलाड़ी हैं जोकोविच। वहीं मेदवेदेव ने बहुत सारे टाइटल्स अपने जीवन में नहीं जीते हैं, लेकिन उन्होंने इस मुकाबले में कड़ी टक्कर देने की कोशिश करी जोकोविच को और वो जीत दर्ज नहीं कर सके। लेकिन मेदवेदेव ने 2021 यूएस ओपन के फाइनल में जोकोविच को हराकर अपना पहला और एकमात्र ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था।
1: विशेष बेहतरीन प्रदर्शन रहा। लेकिन अगर हम महिला वर्ग की बात की जाए तो ईगा स्वायतेक ने तो क्वार्टर फाइनल में आज प्रवेश कर लिया, लेकिन जो उस वर्ग में बाकी खिलाड़ी हैं उनका कैसा रहा है प्रदर्शन?
0: अगर बाकी खिलाड़ियों की बात करें प्रशांत, तो कोको गॉफ का राउंड ऑफ 32 का मुकाबला सन शिनरान से चल रहा है, जहां उन्होंने अभी 5-5 की बराबरी पर पहला गेम चल रहा है। देखना यह दिलचस्प होगा कि कौन अगले दौर में जगह बनाएगा। वहीं स्वायतेक के अलावा एलिना स्वेतिलोना, एलिस मार्टिन्स, इवा जोविक के अलावा अन्य खिलाड़ियों ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अब राउंड ऑफ 16 में ईगा स्वायतेक इवा जोविक से मुकाबला करेंगी। वहीं एन ली एलिना स्वेतिलोना से भिड़ेंगी। एलिना कराइवा क्विन झेंग के साथ खेलेंगी और अभी जारी मुकाबले के विजेता का मुकाबला एलिस मर्टेंस से होगा। और प्रशांत, ईगा स्वायतेक और एलिना स्वेतिलोना ये प्रतियोगिता जीतने की प्रबल दावेदार भी मानी जा रही हैं।
1: काफी अहम टूर्नामेंट्स चल रहे हैं टेनिस में, विशेष चाइना ओपन की अगर हम बात कर ले या जापान ओपन की, और टेनिस प्रशंसकों के लिए भी काफी अहम है। एक तरफ जहां जोकोविच चाइना ओपन के फाइनल में, वहीं जापान ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्कराज बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। पुर्तगाल ने यूईएफए फुटबॉल नेशंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिना खेल रहे पुर्तगाल टीम ने 79वें मिनट में गोंकालो

0: रामोस के विजय गोल की मदद से नॉर्वे को 2-1 से हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: पुर्तगाल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्रिस्टोफर अजेर ने शानदार हाफ वॉली के जरिए मेहमान टीम को बढ़त दिलाई, लेकिन 2 मिनट बाद ही जोआओ कैंसेलो ने शानदार अंदाज में गोल करके स्कोर को बराबर कर दिया। इसके बाद मेजबान टीम ने बढ़त हासिल की। जोआओ फेलिक्स के शानदार पास पर गोंकालो रामोस ने गोल दागा। 2 बार नेशंस लीग का खिताब जीत चुकी पुर्तगाल की टीम ने मैच के अंत तक अपनी बढ़त कायम रखी और ग्रुप A4 में जीत का सिलसिला जारी रखा। हालांकि मैच के आखिरी मिनट में फ्रांसिस्को कांसेकाओ को दूसरा पीला कार्ड मिलने के कारण मैदान छोड़ना पड़ा, लेकिन इससे टीम की जीत पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं दूसरी ओर रास्मस होजललुंड और जोशुआ जर्कनी ने अहम भूमिका निभाई और डेनमार्क तथा नीदरलैंड्स ने भी महत्वपूर्ण जीत हासिल की। रास्मस की सदी हुई पेनल्टी ने डेनमार्क को इस कैंपेन की दूसरी जीत दिलाई और वेल्स के खिलाफ अपनी अजेय बढ़त को 5 मैचों तक बढ़ा दिया। वेल्स ने मैच की शुरुआत अच्छी की और गेंद पर ज्यादा कब्जा रखते हुए ब्रेंडन जॉनसन और लुइस कोमास के जरिए कई हमले किए। हालांकि धीरे धीरे डेनमार्क ने वापसी की और हाफ टाइम से पहले गुस्ताव स्कानसेन और ओलिवर प्रोवसगार्ड गोल करने के करीब पहुंच गए। दूसरे हाफ में वेल्स के गोलकीपर डैनी वार्ड ने रास्मस होजलुंड और स्कान केस के शॉट्स पर शानदार बचाव किए। हालांकि बाद में उनके एक गलत पास की वजह से डेनमार्क को पेनल्टी मिल गई। होजलुंड ने इस मौके का फायदा उठाते हुए आसानी से गोल कर दिया। ये उनके पिछले 4 नेशंस लीग मैचों में तीसरा गोल था। वहीं आइंधोवन और नीदरलैंड्स ने सर्बिया को 2-1 से हराया। टीम की जीत में जोशुआ जर्कजी का गोल अहम रहा। इस जीत के साथ जावी हर्नांडेज की कोचिंग में नीदरलैंड्स की टीम अपना अजेय रिकॉर्ड बरकरार रखने में सफल रही। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस जीत के साथ पुर्तगाल की टीम ने ग्रुप में 2 जीत और 2 ड्रॉ का रिकॉर्ड कायम रखा और अपनी अजेय लय बरकरार रखी है। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक देश के नाम किए। 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। 2 हफ्ते से अधिक चले इस आयोजन में भारतीय खिलाड़ियों ने हर मैदान पर अपना दमखम दिखाया। देश के इस ऐतिहासिक अभियान में हरियाणा के प्लेयर्स का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने 14 स्वर्ण समेत कुल 32 पदक जीते। बॉक्सिंग में परवीन हुड्डा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया तो फ्री स्टाइल कुश्ती में सुजीत कलकल ने देश को गोल्ड मेडल दिलाया। पुरुष पहलवान अंकुश पंघाल 80 किलोग्राम वर्ग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने में सफल रहे, जबकि कीर्ति शर्मा, नीरू ढांडा ने भी गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के खिलाड़ियों को इस खास उपलब्धि के लिए भी बधाई दी है।
2: India will win gold. India has won gold in the women's team recurve event. A feat never done before. Celebrate this win. Breathe in this moment. History has been created. First time champions, 2 youngsters in Kirti and Kumkum, along with Ankita Bhagat, are stepping onto the prime podium with gold.
3: Out of it. और ये मैच भारत ने जीत लिया और इसी के साथ यहाँ आ गया एक और गोल्ड मेडल। भारत ने ये मुकाबला जीत के एक और स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है यहाँ।
4: Hits the target. So we've got gold with a gold in the women's individual trap event. This is absolutely fantastic.
5: There's the touch and it goes. She gets it. Pranavi Sharath-Urs, even par on the day. 15 under. She finishes overall. India's first gold medal winner in golf.
6: Asian Games mein gold medal aa gaya hai Prabhu. Pehli baar hua hai ki men aur women dono hockey teams ne ek saath gold medal jeete ho. Los Angeles walo, swagat.
7: Now she comes down the track but misses a straight ball. That'll seal the deal. India clinch gold in the 20th Asian Games, Aichi Nagoya 2026, and make it 2-2.
6: Nazare rakhiye, Vidya Ramraj, kya gold medal aa raha hai? Pichli baar silver tha, is baar gold medal aa gaya hai Prabhu.
8: Kitabon mein likha jayega, Sujit Kalkal ke naam ke saath chalta rahega. किस तरह से ट्रेल कर रहे थे लेकिन कैसी वापसी की और एक गोल्ड मेडल भारत के लिए दिलवा दिया सुजीत कलकल। असंभव वापसी को उन्होंने यहां पर साकार किया है।
9: बिग न्यूज कमिंग आउट ऑफ द 10K, गुलवीर सिंह हैज रेप्लिकेटेड हिज CWG फॉर्म, हैज वन अ सिल्वर इन द एशियन गेम्स फॉर इंडिया।

0: और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच कल लखनऊ में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची, तीसरा 11 अक्टूबर को इंदौर, चौथा 14 अक्टूबर को हैदराबाद और पांचवा और अंतिम मैच 17 अक्टूबर को बैंगलोर में होगा। विशेष लगातार टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। T20 का अगर बात की जाए, हाल ही में हमने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, तो ऐसे में कितनी अहम होगी ये श्रृंखला और किन खिलाड़ियों पर होंगी नजरें?
1: जी बिल्कुल प्रशांत, भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है पिछले कुछ समय में, चाहे 2024-2026 दोनों T20 विश्व कप की बात करें या एशिया कप और अभी एशियन गेम्स में गोल्ड, तो शानदार प्रदर्शन भारत का जारी है। यह श्रृंखला इसलिए भी अहम होगी क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जब कप्तानी संभाली तो उनकी शुरुआती 2 सीरीज काफी खराब रही है, हालांकि अब उन्होंने लय जो है थोड़ी सी पकड़ी है और भारतीय टीम को गोल्ड मेडल जिताया है अपनी कप्तानी में। अगर खिलाड़ियों की बात करें तो संजू सैमसन पर निगाहें होंगी क्योंकि ओपनिंग पेयर में अभी वैभव सूर्यवंशी उनको कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं, तो वैभव सूर्यवंशी को अगर इस सीरीज में मौका मिलता है तो वो भी देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं श्रेयस अय्यर जब से कप्तान बने हैं तब से बल्लेबाजी की लय उनकी थोड़ी कम दिखी है, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से वो वापसी करते हैं अपनी बल्लेबाजी में। और गेंदबाजी में मयंक यादव और प्रिंस यादव दोनों लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज खेलते हुए नजर आएंगे, तो बहुत ही अहम होगी इन दोनों के हिसाब से भी ये सीरीज।
0: विशेष लगातार बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, हाल का जो एक दिवसीय श्रृंखला गया है वो सबसे बड़ा प्रमाण है, लेकिन गेंदबाजों का प्रदर्शन औसतन रहा है इस श्रृंखला में भी हमें देखने को मिला, तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख गेंदबाज होंगे जो इस श्रृंखला में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे?
1: अर्शदीप सिंह जो है वो सबसे पहला नाम सामने आता है क्योंकि वो गेंदबाजी को लीड करेंगे पेस बॉलिंग अटैक को। वहीं कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई भी स्पिन डिपार्टमेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। प्रिंस यादव और मयंक यादव के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस श्रृंखला से सीखें और आने वाले टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार करें और भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन दृढ़ करें।
0: और हार्दिक पांड्या चोट के कारण काफी समय से बाहर है, ऐसे में शिवम दुबे की भूमिका कितनी अहम हो जाती है?
1: शिवम दुबे बल्लेबाजी से काफी प्रभावित कर ही रहे हैं हार्दिक पांड्या की गैर हाजिरी में या उनकी हाजिरी में। अगर 2025 की बात करें, 24 की बात करें, किसी भी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, गेंदबाजी पर थोड़ा ध्यान देना होगा।
0: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एप्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में

0: भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: राष्ट्रपति पामला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पामला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: And Department of Science and Technology, our DST.
1: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में 5वें कॉटेल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि AI ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा AI अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
6: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में

0: नागर विमानन मंत्री केर राममोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
1: आज MOUs में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एकतरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
2: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ 3 विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
3: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवंबर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
4: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
5: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर

0: कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
1: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
3: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिन के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। और जर्मनी तथा अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियां नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Switzerland signed 5 pacts to strengthen cooperation in transport technology, infrastructure and mobility, identify new avenues for defense cooperation and deepen collaboration in nuclear energy. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar says, India's multi-alignment approach enables engagement with major global powers, including US, Russia and China. First cargo vessel since independence sails from Assam to Bangladesh via Brahmaputra, reviving international trade route after 80 years. West Bengal to get 4 new airports in 2 years to strengthen regional air connectivity as a centre and state sign MOU. And German and US scientists win Nobel Prize in Medicine for breakthrough technique unlocking mysteries of the brain. And now the news in detail. India and Switzerland today signed 5 agreements in New Delhi following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin. The agreements cover a wide range of areas including migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas. In a joint press meet after the talks, Prime Minister Modi said, during their talks, the two sides identified new avenues for defense cooperation and deepened collaboration in nuclear energy.
5: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे

0: Education Minister said airports would be developed at Chara in Purulia, Kalaikonda in Paschim Mednipur, Balurghat in Dakshin Dinajpur and Hasimara in Alipurdwar.
1: हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का
2: हसीमारा एंड कलाईकुंडा आर पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट विद प्लान्स टू एस्टैब्लिश सिविल एनक्लेव्स एट बोथ लोकेशंस. कलाईकुंडा ऑलरेडी हैज 2,700 मीटर रनवे कैपेबल ऑफ अकोमोडेटिंग नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट सच एज द बोइंग 737 एंड एयरबस A320 विच कुड सिग्निफिकेंटली एनहांस एयर कनेक्टिविटी इन द रीजन. सिमिलरली एट बेलूरघाट द एग्जिस्टिंग एयरशिप विल बी एक्सपेंडेड टू फैसिलिटेट द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल एयर ऑपरेशंस. MOU also envisages the development of a new airport at Purulia.
1: यहाँ पे भी हम एक नया एयरपोर्ट बनाने का काम यहाँ से करेंगे.
0: Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action.